0: every year, and that's the irony of the Millennium City. We get you some reactions.
1: तो मेरे जवान ने रिपोर्ट दी कि वो जमीन धस गया है, तुरंत मौके पे आया हूँ। उस टाइम छोटा गड्ढा था और मैंने इसके बाद में तुरंत बैरिकेटिंग कर दी और अपने सीनियर अधिकारियों को फोन कर दिया और एमसीजी और जीएमडी को मैंने फोन कर दिया और स्थिति को उस टाइम मौके से संभाल लिया था। हाँ, पाइपलाइन टूट गया है, वो दिख रहा है पाइपलाइन टूट गया।
2: देखो, गुड़गांव के अंदर तो कई सालों से वाटर लॉगिंग हो रही है और जो मेन रीजन है वाटर लॉगिंग का वो यही है कि जो पुराने परंपरागत नाले थे जो पहाड़ से पानी को ले जाया करते थे जमुना तक, उनके ऊपर डेवलपमेंट हो गई है और वो कांग्रेस के टाइम की डेवलपमेंट हुई आज तक हम संभाल रहे हैं। एक ही तरीका है इसको अब आज के दिन ठीक करने का कि जहां पर ही पुराने नाले थे उसको अंडरग्राउंड टनल्स बना करके, जैसे कि हम मेट्रो के लिए बनाते हैं, उस तरह के टनल बना करके इस पानी को उसी पुराने रास्तों के मार्फत भेजें, तो उसके ऊपर सरकार काम कर रही है, उसके लिए पैसा हम तजवीज़ करवा रहे हैं।
3: सीएम साहब और सारे के सारे मीटिंग्स लेते रहते हैं और क्योंकि लंबा टाइम की बात है तो इसमें सारी की सारी जो इसकी सॉल्यूशंस भी निकालने में टाइम लगेगा। मैं अपने विभाग के बारे में भी जैसे आपको बताऊं, इरिगेशन डिपार्टमेंट का इतना लंबे टाइम से काम नहीं हुआ है, इतना झड़झड़ हालत पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो गई है कि अब उसको एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत बहुत हद तक उसका पूरा नवीनीकरण होगा। तो ये सारी की सारी इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो विजन है और ये इस मामले में स्टॉक लिया है कि किस तरीके से पूरा की पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर हमको इरिगेशन डिपार्टमेंट को कैसे सुधारना है।
4: 12 साल से बीजेपी सरकार ने गुड़गांव को, गुरुग्राम शहर को, उन्होंने कभी वो उसे कूड़े का ढेर बनाते हैं, कभी वो गंदगी का गटर गुड़गांव को बनाते हैं और कभी बाढ़ का शहर बना देते हैं। 1400 करोड़ रुपया नायब सैनी जी आपने खर्च किया, बड़े बड़े दावे किए, परंतु हो क्या रहा है? स्कूल बसें फ्लड के पानी में, बारिश के पानी में बह रही हैं, बच्चे 6-6 घंटे वहां बैठे हैं, बच्चे किलकिला रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। जो हिंदुस्तान का आईटी हब है गुरुग्राम, वो हिंदुस्तान का बाढ़ हब बन गया है बारिश के पानी से।
0: Well, there's lot more lined up on the other side. I'll be right back. Don't you go anywhere.

0: हाँ हाँ QR स्कैन करता हूँ, कैशबैक आ जाएगा ना। टिंकू थोड़ा ध्यान से।
1: विशंभर तू थोड़ा ध्यान से, QR स्कैन या पिन डालना सिर्फ पेमेंट करने के लिए होता है, ये फ्रॉड है फ्रॉड।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
3: वेलकम टू इंडियाज बिगेस्ट ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट,
4: वंदे भारतम, भारतम वंदे भारतम।
5: हमें ये पूरा रोड मैप क्लियर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना।
6: बंधन एक पोर्टेबल ECG मशीन है,
7: सिर्फ यहाँ पे थेरेपीज डिजाइन की गई है।
8: इफ यू नीड एनी मैन्युफैक्चरिंग हेल्प डू रीच आउट एंड
9: आई एम मोर देन हैप्पी टू गेट योर प्रोडक्ट टू ऑल ऑफ देम।
10: हर हफ्ते इंडिया के असली ग्रास रूट इनोवेटर्स दिखेंगे वंदे भारतम में, कमिंग सून ऑन NDTV।
11: जब जिंदगी की डोर कुछ अनमोल मिनटों पर टिकी हो, तब मंजिल नहीं समय मायने रखता है। हर उम्मीद को थामने और हर जीवन को नई उड़ान देने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश में गरीब एवं जरूरतमंद नागरिकों को आपातकालीन परिस्थितियों में मेडिकल सहायता पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कर हर जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की है।
12: गरीब से गरीब आदमी और उसको कोई बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना है एयर एम्बुलेंस की सुविधा के माध्यम से, कि उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार ने किया।
11: अब तक 140 से अधिक जीवन रक्षक मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी है। आयुष्मान भारत कार्ड धारकों और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को ये सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।
13: मुझे सही समय पर एयर एम्बुलेंस मिली, जिससे मैं स्वस्थ हूँ और मेरा सही समय पर इलाज हो गया।
11: अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की मदद से गंभीर मरीजों को तेजी से बेहतर अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। एयर एम्बुलेंस MP पोर्टल और मोबाइल ऐप से अब ये सेवा और भी आसान हो गई है।
14: A world of questions. Ideas that challenge the ordinary. Conversations that connect countries and cultures. Where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders, The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal.
15: Nutrition Partner, Sudha, Vada Shuddhata Ka.
16: विगत 9 वर्षों में डबल इंजन सरकार के सुशासन एवं निवेश फ्रेंडली नीतियों से उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है। इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए, साथ ही निवेश, तकनीक और रोजगार के नए द्वार खुले। इसी साझेदारी को आगे बढ़ाने में
17: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
18: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
19: दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
20: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
21: योर फ्रेंड सेड ये ले ले, वी सेड मेबी नॉट।
22: Day moves fast and so do the stories. A very good morning. I'm Arjun Samar Mahendran and here are the top headlines we're tracking for you. It's Wednesday morning. After the BJP's new team takes charge, buzz is growing over a possible cabinet reshuffle. With 12 ministerial slots open, more young faces, women and NDA allies could be in focus. A major revelation has emerged on Operation Sindoor, with a former CDS confirming that Indian drones struck targets in the Kirana Hills. The disclosure sheds a fresh light on one of the key operations during the conflict.

0: फेस ऑफ।
1: एक दूसरे को महिलाओं का मान सम्मान हमने रखना चाहिए, फिर वो एक्टर हो एक्ट्रेसेस हो, एक दूसरे के बारे में टिप्पणी, इस प्रकार की टिप्पणी करना, बिलो द बेल्ट टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझती। दोनों एक्ट्रेस अपने अपने एक कामयाब एक्ट्रेसेस हैं, अपने अपने एक कामयाब सिद्ध किया है उन्होंने, तो क्यों ऐसी गरिमा करें एक दूसरे को? और राजकीय मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी करना मैं नहीं समझती ठीक बात है।
2: मैं ये कहना चाहूँगा, कंगना रानी इतनी अच्छी, इतनी बड़ी, इतनी मैच्योर बीजेपी पार्टी जो है उसमें आप मेंबर हो और बड़े यत्न से बड़े प्रयत्न से आप जीत के आई हो हिमाचल से, अभी आपका फर्ज बनता है थोड़ी थोड़ी प्यारी प्यारी मैच्योर बातें करो ना यार, ये किसी के कपड़ों के ऊपर जोबा नहीं देता है। कम ऑन, यू आर अ गुड एक्टर, यू मस्ट बी अ गुड पर्सन ऑल्सो। आई थिंक इट इज़ इट विल बी अप्रोप्रिएट कि अगर आप यहाँ से निकल के थोड़ा सा और मैच्योर बात कीजिए जिससे कि बीजेपी को फ़ायदा हो।
3: देखिए, आदमी किसी की तरफ एक वोट का इशारा करता है तो 3 वोट उसके तरफ भी होते हैं। देखिए, आदमी किसी की तरफ एक वोट का इशारा करता है तो 3 वोट उसके तरफ भी होते हैं।
4: आज के ज़माने में सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए हम कोई भी भाषा को उपयोग कर सकते हैं। कंगना एक फिल्म एक्ट्रेस भी है और साथ ही साथ आज वो एक पार्लियामेंट में एक सदस्य भी है। आज उसका एक जो वजूद है वो एक सिर्फ एक एक्ट्रेस का नहीं है, वो आज एक पार्लियामेंट की एक सामने एक चेहरा बनती है कि हाँ ये MP है हमारे हिंदुस्तान की और BJP की है। आज आप ही को अपनी भाषा का नियंत्रण नहीं रहा तो आप दूसरों को कहते हो कि क्यों मुझे बोलें, जब आप अपनी ऐसी दुरुपयोग करते हो भाषा का, सस्ती कॉपी बोलना एक औरत को, क्या ये सही भाषा है? जब आपके लोग कुछ बोलते हैं B ग्रेड से आई है, C ग्रेड से आई है और क्यों बैठी है पार्लियामेंट में, तब तो आपको बड़ा क्रोध आता है कि क्यों बोला जा रहा मेरे लिए, लेकिन आप फिर दूसरों के लिए क्यों बोल रहे हो?
0: Well, now we shift our focus to another political face-off, which is refusing to die down. This time, it's Kiran Rijiju's swim in Arunachal River that has stirred political water as well in capital New Delhi. On Tuesday, you see, Pawan Kheda, he took a jibe at Rijiju over his swimming attire, calling him half-naked and mocking him for invoking Rahul Gandhi even evening while taking a swim, alleging that Rahul has gone under BJP's skin. You see, hitting back at Kheda, Rijiju wrote that he's a first-time nominated MP and that he shouldn't make such indecent remarks. Now, Rijiju further took a jibe at Pawan Kheda, saying that he shall report Kheda to Assam's Chief Minister Himanta Biswa Sarma. Rijiju claimed that it was Congress supporters who invoked Rahul looking at Rijiju swimming and that he was just replying to those trolls. Well, over in Karnataka, when asked to wait in queue for darshan at a temple, an MLA's VIP daughter, well, she got restless, and what did she end up doing? She ended up slapping a cop on duty. Visuals are right next to me. Now, the accused woman is the daughter of a BJP MLA B. Suresh Gowda and the wife of a serving ACP, Assistant Commissioner of Police of Karnataka, believe you me. Well, she lost her cool merely because she was asked to wait for a VIP darshan at the temple. An FIR, meanwhile, has been filed against the lady or the accused for using criminal force to deter an officer, that too who was on duty. Well, we stay with Karnataka, where Bengaluru's elite clubs, they're now under the food safety radar, the food safety scanner. Health department teams, they've launched raids across 10 premium clubs to check food safety, hygiene and kitchen standards. We start off with the KSCA club. That's where officials flagged poor personal hygiene among food handlers, blocked drainage, an unhygienic frozen storage room and improper segregation of vegetarian and non-vegetarian food. Talk about kitchen nightmares. At the Boring Institute, one of the most iconic social sites in the city, officials, they reportedly found cockroaches, while the Mahalakshmi Layout Club was issued a notice over hygiene concerns. Now, these are clubs where membership, it generally goes into lakhs and takes years to even be considered. But are basic food safety standards being followed here or not? Meanwhile, in Gurugram, the Millennium City, the corporate capital of NCR, it has been battered by rains and remains

0: flooded for hours. CM Nayab Singh Saini, he was seen in Mumbai hosting the happening Haryana Investment Summit meanwhile. Just look at the irony here. The civic mess, it doesn't seem to end for Gurugram. A road near EFCO Chowk caved in due to which traffic had to be diverted. For those who don't know, it's one of the biggest crossings in the Millennium City. Now, instead of working on permanent solutions for this menace the city has been facing for years together, the Gurugram Disaster Management Authority, well, it's come up with a rather bizarre solution. School buses will not be plying on waterlogged routes. 75 mm of rains 2 days ago brought the smart city of Gurugram to a standstill. Big on budget, big on taxes, well, the city still drowns every year, and that's the irony of the Millennium City. We get you some reactions.
1: तो मेरे जवान ने रिपोर्ट दी कि वो जमीन धस गया है. तुरंत मौके पर आया हूँ. उस टाइम छोटा गड्ढा था और मैंने इसके बाद में तुरंत बैरिकेटिंग कर दी और अपने सीनियर अधिकारियों को फोन कर दिया और एमसीजी और जीएमडी को मैंने फोन कर दिया और स्थिति को उस टाइम मौके संभाल लिया था. हाँ, पाइपलाइन टूट गया है, वो दिख रहा है, पाइपलाइन टूट गया.
2: देखो, गुड़गांव के अंदर तो कई सालों से वाटर लॉगिंग हो रही है और जो मेन रीजन है वाटर लॉगिंग का वो यही है कि जो पुराने परंपरागत नाले थे जो पहाड़ से पानी को ले जाया करते थे जमुना तक, उनके ऊपर डेवलपमेंट हो गई है और वो कांग्रेस के टाइम की डेवलपमेंट हुई हुई आज तक हम संभाल रहे हैं. एक ही तरीका है इसको अब आज के दिन ठीक करने का कि जहाँ पर ही पुराने नाले थे उसको अंडरग्राउंड टनल्स बना करके, जैसे कि हम मेट्रो के लिए बनाते हैं, उस तरह के टनल बना करके इस पुराने पानी को उसी पुराने रास्तों के मार्फत भेजें, तो उसके ऊपर सरकार काम कर रही है, उसके लिए पैसा हम तजवीज़ करवा रहे हैं.
3: सीएम साहब और सारे के सारे मीटिंग्स लेते रहते हैं और क्योंकि लंबा टाइम की बात है तो इसमें सारी की सारी जो इसके सॉल्यूशंस भी निकालने में टाइम लगेगा. मैं अपने विभाग के बारे में भी जैसे आपको बताऊं, इरिगेशन डिपार्टमेंट का इतना लंबे टाइम से काम नहीं हुआ है, इतना झड़झड़ हालत पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो गई है कि अब उसको एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत बहुत हद तक उसका पूरा नवनीकरण होगा. तो ये सारी की सारी इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो विजन है और ये इस मामले में स्टॉक लिया है कि किस तरीके से पूरा की पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर हमको इरिगेशन डिपार्टमेंट को कैसे सुधारना है.
4: 12 साल से बीजेपी सरकार ने गुड़गांव को, गुरुग्राम शहर को, उन्होंने कभी वो उसे कूड़े का ढेर बनाते हैं, कभी वो गंदगी का गटर गुड़गांव को बनाते हैं और कभी बाढ़ का शहर बना देते हैं. 1400 करोड़ रुपया नायब सैनी जी आपने खर्च किया, बड़े बड़े दावे किए, परंतु हो क्या रहा है? स्कूल बसें फ्लड के पानी में, बारिश के पानी में बह रही हैं, बच्चे 6-6 घंटे वहां बैठे हैं, बच्चे किलकिला रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं. जो हिंदुस्तान का आईटी हब है गुरुग्राम, वो हिंदुस्तान का बाढ़ हब बन गया है बारिश के पानी से.
0: Well, there's lot more lined up on the other side. I'll be right back. Don't you go anywhere.

0: they it should have hit Kerana Hill. And that is something that would have jolted Pakistan, and not only Pakistan, but Western powers also. That's the reason that we see the, that restlessness in US, in Pakistan, about the ceasefire. Donald Trump, you know, many suggest that Donald Trump was the one who announced ceasefire. How can this happen? This shouldn't have happened. But that was not because of someone was someone would have overpowered India when it comes to ceasefire. It was a desperation after Kerana Hill that made Donald Trump announce the ceasefire, or for that matter, talk about ceasefire, you know, before India or Pakistan could have done. India is very clear that they got frantic calls from DGMO of Pakistan. And, you know, when it comes to Kerana Hill, when it comes to Bollari, the image that we were just seeing from the podcast of Control All Defense, the way these images started coming out started giving, you know, jitters to Pakistan, because Noor Khan base, one of the safest base, Sargodha, you know, for that matter, if we talk about Rahim Yar Khan, if we talk about Lahore Air Defense, the Karachi Air Defense, the way their air defense were being hit, the way their
1: absolutely, Rishabh, not only Kerana, but as you mentioned, Bollari and other places, other important establishments as well. Meanwhile, thank you so much for getting us the latest, like always. And shifting focus, you see, the Kangana Ranaut versus Kriti Sanon row over her outfit in an advertisement set around Raksha Bandhan is refusing to die down. In the latest, leader of opposition Rahul Gandhi, he's reacted on the controversy, backing actor Kriti Sanon. Reacting to Sanon's Instagram story, Rahul wrote, "What a woman wears, what she does and where she goes is her choice. Stop trolling women for exercising their freedom." Now, Rahul Gandhi's remarks, they came after Kangana had earlier remarked, "Why would you tie your brother a rakhi in your bikini slash undergarments?" To which Kriti had replied, "When will we stop telling women what to wear?" Meanwhile, listen into the reactions that are coming in.
2: हम एक दूसरे को महिलाओं का मान सम्मान हमने रखना चाहिए. फिर वो एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, एक दूसरे के बारे में टिप्पणी, इस प्रकार की टिप्पणी करना, बिलो द बेल्ट टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझते. दोनों एक्ट्रेस अपने अपने एक कामयाब एक्ट्रेसेस हैं, अपने अपने एक कामयाब सिद्ध किया है उन्होंने, तो क्यों ऐसी गरिमा करें एक दूसरे को? और राजकीय मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी करना मैं नहीं समझती ठीक बात है.
3: मैं ये कहना चाहूँगा, कंगना रानी इतनी अच्छी, इतनी बड़ी, इतनी मैच्योर बीजेपी पार्टी जो है उसमें आप मेंबर हो, और बड़े यत्न से, बड़े प्रयत्न से आप जीत के आई हो हिमाचल से. अभी आपका फर्ज बनता है, थोड़ी थोड़ी प्यारी प्यारी मैच्योर बातें करो ना यार. ये किसी के कपड़ों के ऊपर जोबा नहीं देता है. कम ऑन, यू आर अ गुड एक्टर, यू मस्ट बी अ गुड पर्सन ऑल्सो. आई थिंक इट इज़ इट विल बी अप्रोप्रिएट कि अगर आप यहाँ से निकल के थोड़ा सा और मैच्योर बात कीजिए, जिससे कि बीजेपी को फ़ायदा हो.
4: देखिए, आदमी किसी के तरफ एक वोट का इशारा करता है तो तीन वोट उसके तरफ भी होते हैं. देखिए, आदमी किसी के तरफ एक वोट का इशारा करता है तो तीन वोट उसके तरफ भी होते हैं.
5: आज के ज़माने में सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए हम कोई भी भाषा को उपयोग कर सकते हैं. कंगना एक फिल्म एक्ट्रेस भी है, और साथ ही साथ आज वो एक पार्लियामेंट में एक सदस्य भी है. आज उसका एक जो वजूद है वो एक सिर्फ एक एक्ट्रेस का नहीं है, वो आज एक पार्लियामेंट की एक सामने एक चेहरा बनती है कि हाँ, ये एमपी है हमारे हिंदुस्तान की और बीजेपी की है. आज आप ही को अपनी भाषा का नियंत्रण नहीं रहा तो आप दूसरों को कहते हो कि क्यों मुझे बोलें. जब आप अपनी ऐसी दुरुपयोग करते हो भाषा का, सस्ती कॉपी बोलना एक औरत को, क्या ये सही भाषा है? जब आपके लोग कुछ बोलते हैं, बी ग्रेड से आई है, सी ग्रेड से आई है, और क्यों बैठी है पार्लियामेंट में, तब तो आपको बड़ा क्रोध आता है कि क्यों बोला जा रहा मेरे लिए, लेकिन आप फिर दूसरों के लिए क्यों बोल रहे हो?
1: Well, we shift our focus to some breaking news coming in from Punjab, where the BJP's election blueprint is in fact taking shape. And not surprisingly, drug menace is to be a key pillar of BJP's election campaign, a key plank of the election campaign. In fact, anti-drug yatras have also been planned across 117 states, and the BJP is targeting a full booth network.

0: of course, could spark off a debate. One is him saying that he ensured that there was just one deputy chief minister, and then him also talking about how the community should come together and stand for the cause of a Dalit being made a chief minister. So both of this, of course, could spark off a debate politically, especially within the Congress party.
1: Right. Thank you so much for getting us the latest on that political row which is breaking inside the KPCC. See, viewers, while Gurugram, the Millennium City, the corporate capital of NCR, was battered by rains and remained flooded for hours, Chief Minister Nayab Singh Saini, he was seen in Mumbai, Maximum City, hosting the happening Haryana Investment Summit. The civic mess doesn't seem to end for the Millennium City, Gurugram. Meanwhile, a road near IFFCO Chowk, one of the oldest crossings in the city, it caved in, due to which traffic had to be diverted. Instead of working on permanent solutions for this menace, the Gurugram Disaster Management Authority, it's come up with a rather bizarre solution. It says school buses will not be plying on waterlogged routes. 75 millimetre of rains 2 days ago brought the smart city of Gurugram to a complete standstill. Big on budget, big on taxes, big on dreams, but the city still drowns every year. We get you some latest reactions that are coming in.
2: तो मेरे जवान ने रिपोर्ट दी कि जमीन धसी है, तुरंत मौके पर आया हूँ। उस टाइम छोटा गड्ढा था और मैंने इसके बाद में तुरंत बैरिकेटिंग कर दी और अपने सीनियर अधिकारियों को फोन कर दिया और एमसीजी और जीएमडी को मैंने फोन कर दिया और स्थिति को उस टाइम मौके से संभाल लिया था। पाइपलाइन टूट गया है, वो दिख रहा है, पाइपलाइन टूट गई।
3: देखो, गुड़गांव के अंदर तो कई सालों से वाटर लॉगिंग हो रही है और जो मेन रीजन है वाटर लॉगिंग का वो यही है कि जो पुराने परंपरागत नाले थे जो पहाड़ से पानी को ले जाया करते थे जमुना तक, उनके ऊपर डेवलपमेंट हो गई है और वो कांग्रेस के टाइम की डेवलपमेंट हुई हुई आज तक हम संभाल रहे हैं। एक ही तरीका है इसको अब आज के दिन ठीक करने का कि जहाँ पर ही पुराने नाले थे उसको अंडरग्राउंड टनल्स बना करके, जैसे कि हम मेट्रो के लिए बनाते हैं, उस तरह के टनल बना करके इस पुराने पानी को उसी पुराने रास्तों के मार्फत भेजें, तो उसके ऊपर सरकार काम कर रही है, उसके लिए पैसा हम तजवीज़ करवा रहे हैं।
4: एम साहब और सारे के सारे मीटिंग्स लेते रहते हैं और क्योंकि लंबा टाइम की बात है तो इसमें सारी की सारी जो इसकी सॉल्यूशंस भी निकालने में टाइम लगेगा। मैं अपने विभाग के बारे में भी जैसे आपको बताऊं, इरिगेशन डिपार्टमेंट का इतना लंबे टाइम से काम नहीं हुआ है, इतना झड़झड़ हालत पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो गई है कि अब उसको एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत बहुत हद तक उसका पूरा नवीनीकरण होगा। तो ये सारी की सारी इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो विजन है और ये इस मामले में स्टॉक लिया है कि किस तरीके से पूरा की पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर हमको इरिगेशन डिपार्टमेंट को कैसे सुधारना है।
5: 12 साल से बीजेपी सरकार ने गुड़गांव को, गुरुग्राम शहर को, उन्होंने कभी वो उसे कूड़े का ढेर बनाते हैं, कभी वो गंदगी का गटर गुड़गांव को बनाते हैं और कभी बाढ़ का शहर बना देते हैं। 1400 करोड़ रुपया नायब सैनी जी आपने खर्च किया, बड़े बड़े दावे किए, परंतु हो क्या रहा है? स्कूल बसें फ्लड के पानी में, बारिश के पानी में बह रही हैं, बच्चे 6-6 घंटे वहां बैठे हैं, बच्चे किलकिला रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। जो हिंदुस्तान का आईटी हब है गुरुग्राम, वो हिंदुस्तान का बाढ़ हब बन गया है बारिश के पानी से।
1: Meanwhile, my colleague Ankit, he spoke with BJP MP Dharambir Singh, who in turn spoke about Gurugram's development vision for 2047. Listening.
6: जनता भी ये सुनना चाहती है कि सरकार जो डबल ट्रिपल इंजन की बात करती है वो गुरुग्राम के लिए कर क्या रही है।
7: देखिए, हमने पीछे के इतिहास में जाना पड़ेगा। हरियाणा एक नया प्रदेश है। आज से 50-60 साल पहले ये केवल गुरुग्राम गांव था और धीरे धीरे हम दिल्ली के नजदीक होने की वजह से गुरुग्राम एक बहुत बड़ा शहर के तौर पर

0: डेवलप हुआ। हमारा जो योजनाएं बढ़नी चाहिए थी वो योजनाएं हम नहीं बढ़ा पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर रोड की चौड़ाई हो, पानी की निकासी हो, पब्लिक सेक्टर की कोई चीज बढ़ानी हो, यूटिलिटी के लिए कोई जगह बढ़ानी हो, हम इस पानी को उठा के जमुना में डालने की बात हो, धीरे धीरे जो योजना बढ़नी चाहिए थी वो योजना आज से नहीं, पिछले 50 साल के इतिहास में देखोगे तो एक गांव के लिए योजनाएं बनी थी, छोटे शहर के लिए बनी थी, आज सबसे बड़ा शहर बन चुका है। मौसम का परिवर्तन भी ऐसा है कि कभी बारिश बहुत लंबे टाइम पर होती थी, आज तो एक घंटे में इतना पानी पड़ जाता है कि उसका निकासी नहीं हो पाती।
1: तो सर सारी गलती,
0: ऐसे हालात में
1: सारी गलती मौसम की है। सरकार आप कह रहे हैं 12 सालों से सरकार 12 सालों से चलिए मैं आपकी बात समझ गया। आप मुझे ये बताइए कि पिछले 12 सालों में तीन ऐसी बड़ी योजनाएं जो गुरुग्राम की नालियों को ड्रेनेज को ठीक करने के लिए सरकार ने की हो, तीन बड़ी योजना।
0: आज के दिन बहुत बड़े पानी जो भी ऊपर का पानी था मैं गुड़गांव का, उसको निकासी के लिए हमने उसी को पानी का नाले में डालने के लिए कंप्लीट काम चालू कर दिया। कंप्लीट
1: कब किया?
0: ठीक है कि वो जो नदी नाले पुराने नाले थे हमारे, जिनको पहले आज से 20 साल पहले एनक्रोच कर दिया गया, छोटे नाले बना दिए गए, उन नालों को आज के हम उसी जगह पर चौड़ा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही।
1: समस्या अगर अभी आ रही है, सरकार अब यही कहती रहेगी 60 साल पहले की बात करती रहेगी, तो फिर किस बात की सरकार, किस बात की आप लोगों की तैयारी
0: है? हमारा नया मास्टर प्लान है, दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, गुड़गांव का हो, नए जो शहर बसाने हैं उनका मास्टर प्लान आप देखिए, इसलिए बाहर का इन्वेस्टर हमारे यहाँ आएगा, आएगा 100% आएगा। पुराना गुड़गांव अगर हम देखें इसको सारे को तोड़ कर दोबारा नया कैसे बना देंगे?
1: बता दीजिए आज की कितने साल लगेंगे आपकी सरकार, तीसरी बार बीजेपी की सरकार है वहां पर, उसके बाद अभी और कितनी बार बीजेपी की सरकार वहां पर बनेगी कि गुड़गांव के लोगों को ठीक ठाक पानी, सड़कें जो हैं वो बिना ठीक ठाक
0: वचनबद्ध है 2047 तक ये देश सारा विकसित देश होगा, हरियाणा सबसे पहले विकसित होगा जिसमें गुड़गांव शामिल है।
1: 2047 तक हो जाएगा सर?
0: हाँ 2047 तक आप देखना हमारा गुड़गांव भारत क्या होगा।
1: तो 2047 तक हो जाएगा, यानी कि गुड़गांव के लोगों को आराम से अभी 21 साल और बीजेपी को वोट देके आराम करना चाहिए कि 2047 तक कर ही देंगे आप?
0: और क्या मिली जुली सरकार देना चाहेगा देश?
1: तो
0: देश
1: चाहता है कि सरकार, अगर आपके पास सलूशन नहीं है तो फिर किसी और के पास जाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को कह रहे हैं 21 साल का इंतजार करो, 2047 में आपको सड़कें ठीक देंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा सर?
0: देश तेजी से बदल रहा है, तेजी से बदल रहा है। जिस जो देश 12 साल पहले था आज वो देश नहीं है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर इस 12 साल में रेल का, सड़क का, निकासी का, पानी का, बिजली का बहुत बदलाव आया।
2: And shifting our focus, you see, when asked to wait in queue for darshan at a temple, an MLA's entitled VIP daughter, she got restless and slapped a cop on duty. The accused woman is the daughter of BJP MLA B. Suresh Gowda and the wife of a serving assistant commissioner of police in Karnataka. She lost her cool merely because she was asked to wait for her VIP darshan at the temple. An FIR, meanwhile, has been filed against the lady for using criminal force to deter an officer, that too on duty. Meanwhile, we're getting some breaking news coming in where Oasi has slammed Talabad High Court ruling. He said the High Court verdict on hijab is wrong. He's called the order an attack on Islam. And he's also backed the student's hijab plea, which has been in fact ruled against by the High Court. Let's just listen in to the latest coming in from Oasi.
3: अलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया, हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी, हिजाब पहन के कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि साबरीमाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व फॉर जजमेंट है। अलाहाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस को अपना जजमेंट रोकना चाहिए था।
2: Well, my colleague Ashish joins us for the latest on this escalating controversy. Ashish, what's the latest you can tell us?
4: So, like Asaduddin Owaisi, MIM president and Hyderabad MP, has clearly objected and showed his disagreement, in fact, with the observation made by Allahabad High Court. Remember, a petition was filed in Allahabad High Court where a few of the students, they demanded hijab wearing permission. And while hearing that case, Allahabad High Court made the observation that hijab or

0: electricity bill paid.
1: Really?
0: Your mobile recharge is done.
1: How?
0: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
1: It's the Mahi way.
2: देश का टायर, जेके टायर।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाह मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आके और मसाला।
4: फूड इज म्यूजिक, सिंक्रनी ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स। आई एम अ कंडक्टर ऑफ केओस। शेफ जागर आनंद एट एनडीटीवी वॉक द टॉक।
5: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
6: अक्रॉस द कंट्री
7: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया, विटनेस्ड हिस्ट्री बीइंग मेड इन ग्लोबल कैपिटल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स, ब्रॉट क्लैरिटी टू कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। आदित्य राज कौल, covering international affairs like no one else, only on NDTV network।
5: meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani aur pure vermicelli, swadisht, sehatmand har roz।
8: jab tak la jawab na ban jaye usse nahi itminan hai, tabhi to richmond banna nahi aasan hai।
7: 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आरती और मसाला।
4: फूड इज म्यूजिक, सिंक्रनी ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स। आई एम अ कंडक्टर ऑफ केओस। शेफ जागरानंद एट एनडीटीवी वॉक द टॉक।
5: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
6: अक्रॉस द कंट्री
7: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया, विटनेस्ड हिस्ट्री बीइंग मेड इन ग्लोबल कैपिटल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स, ब्रॉट क्लैरिटी टू कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। आदित्य राज कॉल, covering international affairs like no one else, only on NDTV network।
5: meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani aur pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz।
7: 3 decades of watching the world change, of asking the questions that couldn't wait, of telling the stories that couldn't be ignored, of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा प्योर मसाला।
4: फूड इज म्यूजिक, सिंक्रनी ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स। आई एम अ कंडक्टर ऑफ केओस। शेफ गागर आनंद एट एनडीटीवी वॉक द टॉक।
5: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
6: थ्री डेकेड्स ऑफ वॉचिंग द वर्ल्ड चेंज, ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस दैट कुडंट वेट। ऑफ टेलिंग द स्टोरीज दैट कुडंट बी इग्नोर्ड। Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
7: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
6: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.

0: हम कोई भी भाषा का उपयोग कर सकते हैं। कंगना एक फिल्म एक्ट्रेस भी है और साथ ही साथ आज वो एक पार्लियामेंट में एक सदस्य भी है। आज उसका एक जो वजूद है वो एक सिर्फ एक एक्ट्रेस का नहीं है, वो आज एक पार्लियामेंट की एक सामने एक चेहरा बनती है कि हाँ ये एमपी है हमारे हिंदुस्तान की और बीजेपी की है। आज आप ही को अपनी भाषा का नियंत्रण नहीं रहा तो आप दूसरों को कहते हो कि क्यों मुझे बोले, जब आप अपनी ऐसी दुरुपयोग करते हो भाषा का, सस्ती कॉपी बोलना एक औरत को, क्या ये सही भाषा है? जब आपके लोग कुछ बोलते हैं बी ग्रेड से आई है, सी ग्रेड से आई है और क्यों बैठी है पार्लियामेंट में, तब तो आपको बड़ा क्रोध आता है कि क्यों बोला जा रहा है मेरे लिए, लेकिन आप फिर दूसरों के लिए क्यों बोल रहे हो?
1: Let's just get you more news coming our way, and this is in regard to Kiran Rijiju's attire while he was swimming in a river in Arunachal Pradesh that has stirred a political row in Delhi. We had Pawan Khera taking a jibe at Rijiju over his swimming attire, calling him half naked and mocking him for invoking Rahul Gandhi while taking a swim. Alleging that Rahul has gone under BJP skin, hitting back at Khera, Rijiju wrote that he is a first-time nominated MP and that he shouldn't make such indecent remarks. He further took a jibe at Pawan Khera, saying that he shall report Khera to Assam's chief minister. Rijiju has claimed that it was the Congress supporters who invoked Rahul, looking at the swimming and the attire of Kiran Rijiju, and that he was just replying to those very trolls. Switching tracks now to the Millennium City of Gurugram. While Gurugram, the corporate capital of NCR, has been battered, this is by rain and also by the flooding that has been reported from the city. We saw the Chief Minister, Nayab Singh Saini, who has been seen in Mumbai hosting the happening Haryana Investment Summit. The civic mess doesn't seem to end when it comes to the Millennium City. A road near IFFCO Chowk that caved in, due to which traffic had to be diverted, is now working on permanent solutions for the issue that plagues the city every single year as far as rain is concerned. It doesn't have to really be the monsoon. It can be every time it rains, the situation only gets back to what we're seeing, you know, which was that are playing out on your screen. This has become the norm when it rains. The Gurugram Disaster Management Authority has come up with a rather bizarre solution. School buses will not be plying on waterlogged roads. 75 mm of rain in a matter of just 2 days has brought the smart city of Gurugram to a standstill. Big on budget, big on taxes, Gurugram still drowns every single year.
2: मेरे को सूचना मिली, मैं इसको तो क्या आसपास ही था, तो मेरे जवान ने रिपोर्ट दी कि तो जमीन धस गया है, तुरंत मौके पर आया हूँ। उस टाइम छोटा गड्ढा था और मैंने इसके बाद में तुरंत बैरिकेटिंग कर दी और अपने सीनियर अधिकारियों को फोन कर दिया और एमसीजी और जीएमडी को मैंने फोन कर दिया और स्थिति को उस टाइम मौके से संभाल लिया था। हाँ, पाइपलाइन टूट गया है, वो दिख रहा है पाइपलाइन टूट गया।
3: गुड़गांव के अंदर तो कई सालों से वाटर लॉगिंग हो रही है और जो मेन रीज़न है वाटर लॉगिंग का वो यही है कि जो पुराने परंपरागत नाले थे जो पहाड़ से पानी को ले जाया करते थे जमुना तक, उनके ऊपर डेवलपमेंट हो गई है और वो कांग्रेस के टाइम की डेवलपमेंट हुई हुई आज तक हम संभाल रहे हैं। एक ही तरीका है इसको अब आज के दिन ठीक करने का कि जहाँ पर ही पुराने नाले थे उसको अंडरग्राउंड टनल्स बना करके, जैसे कि हम मेट्रो के लिए बनाते हैं, उस तरह के टनल बना करके इस पुराने पानी को उसी पुराने रास्तों के मार्फत भेजें, तो उसके ऊपर सरकार काम कर रही है, उसके लिए पैसा हम तजवीज़ करवा रहे हैं।
4: एम साहब और सारे के सारे मीटिंग्स लेते रहते हैं और क्योंकि लंबा टाइम की बात है तो इसमें सारी की सारी जो इसके सॉल्यूशंस भी निकालने में टाइम लगेगा। मैं अपने विभाग के बारे में भी जैसे आपको बताऊं, इरिगेशन डिपार्टमेंट का इतना लंबे टाइम से काम नहीं हुआ है, इतना झड़झड़ हालत पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो गई है कि अब उसको एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत बहुत हद तक उसका पूरा नवीनीकरण होगा। तो ये सारी की सारी इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो विजन है और ये इस मामले में स्टॉक लिया है कि किस तरीके से पूरा की पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर हमको इरिगेशन डिपार्टमेंट को कैसे सुधारना है।
5: 12 साल से बीजेपी सरकार ने गुड़गांव को, गुरुग्राम शहर को, उन्होंने कभी वो उसे कूड़े का ढेर बनाते हैं, कभी वो गंदगी का गटर बुड़गावा को बनाते हैं और कभी बाढ़ का शहर बना देते हैं। 1400 करोड़ रुपया नायब सैनी जी आपने खर्च किया, बड़े बड़े दावे किए, परंतु हो क्या रहा है? स्कूल बसें फ्लड के पानी में, बारिश के पानी में बह रही हैं, बच्चे 6-6 घंटे वहां बैठे हैं, बच्चे किलकिला रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। जो हिंदुस्तान का आईटी हब है गुरुग्राम, वो हिंदुस्तान का बाढ़ हब बन गया है बारिश के पानी से।
1: Of course, the Congress party hitting out at the BJP-led state and asking questions as to how long will it take for Gurugram to get its act together. In fact, my colleague Ankit spoke with BJP MP Dharambir Singh to get the answer to that question.
6: जनता भी ये सुनना चाहती है कि सरकार जो डबल ट्रिपल इंजन की बात करती है वो गुरुग्राम के लिए कर क्या रही है।
7: देखिए, हमने पीछे के इतिहास में जाना पड़ेगा। हरियाणा एक नया प्रदेश है। आज से 50-60 साल पहले ये केवल गुरुग्राम गांव था और धीरे धीरे हम दिल्ली के नजदीक होने की वजह से गुरुग्राम एक बहुत बड़ा शहर के तौर पर डेवलप हुआ। हमारा जो योजनाएं बननी चाहिए थी वो योजनाएं हम नहीं बना पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर रोड की चौड़ाई हो, पानी की निकासी हो, पब्लिक सेक्टर की कोई चीज बनानी हो, यूटिलिटी के लिए कोई जगह बनानी हो, हमें इस पानी को उठा के जमुना में डालने की बात हो, धीरे धीरे जो योजना बननी चाहिए थी वो योजना आज से नहीं, पिछले 50 साल के इतिहास में देखोगे तो एक गांव के लिए योजनाएं बनी थी, छोटे शहर के लिए बनी थी, आज सबसे बड़ा शहर बन चुका है। मौसम का परिवर्तन भी ऐसा है कि कभी बारिश बहुत लंबे टाइम पर होती थी, आज तो एक घंटे में इतना पानी पड़ जाता है कि उसका निकासी नहीं हो पाती।
6: तो सर, सारी गलती
7: ऐसे हालात में,
6: सारी गलती मौसम की है। सरकार आप कह रहे 12 सालों से सरकार 12 सालों से,
7: मैं कहता हूँ पिछले
6: सरकार 12 सालों से, चलिए मैं आपकी बात समझ गया। आप मुझे ये बताइए कि पिछले 12 सालों में 3 ऐसी बड़ी योजनाएं जो गुरुग्राम की नालियों को, ड्रेनेज को ठीक करने के लिए सरकार ने की हो, 3 बड़ी योजना।
7: आज के दिन बहुत बड़े पानी, जो भी ऊपर का पानी था नए गुड़गांव का, उसको निकासी के लिए हमने उसी को पानी का नाले में डालने के लिए कंप्लीट काम चालू कर दिया। कंप्लीट
6: कब किया?
7: ठीक है कि वो जो नदी नाले पुराने नाले थे हमारे, जिनको पहले ही आज से 20 साल पहले एनक्रोच कर दिया गया, छोटे नाले बना दिए गए, उन नालों को आज के हम उसी जगह पर चौड़ा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही।
6: समस्या अगर अभी आ रही है, सरकार अब यही कहती रहेगी, 60 साल पहले की बात करती रहेगी,
7: नहीं, नहीं।
6: तो फिर किस बात की सरकार, किस बात की आप लोगों की तैयारी?
7: हमारा नया मास्टर प्लान है, दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, गुड़गांव का हो, नए जो शहर बसाने हैं उनका मास्टर प्लान आप देखिए। इसलिए बाहर का इन्वेस्टर हमारे यहाँ आएगा 100% आएगा। पुराना गुड़गांव अगर हम देखेंगे, इसको सारे को तोड़ कर दोबारा नया कैसे बना देंगे?
6: बता दीजिए आज कितने साल लगेंगे? आपकी सरकार तीसरी बार बीजेपी की सरकार है वहां पर, उसके बाद अभी और कितनी बार बीजेपी की सरकार वहां पर बनेगी कि गुड़गांव के लोगों को ठीक ठाक पानी, सड़कें जो हैं वो बिना ठीक ठाक,
7: वचनबद्ध है 2047 तक ये देश सारा विकसित देश होगा, हरियाणा सबसे पहले विकसित होगा जिसमें गुड़गांव शामिल है।
6: 2047 तक हो जाएगा सर?
7: हाँ, 2047 तक आप देखना हमारा गुड़गांव भारत क्या होगा।
6: तो 2047 तक हो जाएगा, यानी कि गुड़गांव के लोगों को आराम से अभी 21 साल और बीजेपी को वोट देके आराम करना चाहिए कि 2047 तक कर ही देंगे आप?
7: और क्या मिली जो नहीं सरकार देना चाहेगा देश,
6: तो
7: देश चाहता है कि सरकार,
6: अगर आपके पास सलूशन नहीं है तो फिर किसी और के पास जाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को कह रहे हैं 21 साल का इंतजार करो, 2047 में आपको सड़कें ठीक देंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा सर?
7: देश तेजी से बदल रहा है। जिस जो देश 12 साल पहले था वो देश नहीं है आज। इंफ्रास्ट्रक्चर इस 12 साल में रेल का, सड़क का, निकासी का, पानी का, बिजली का बहुत बदलाव आया।
1: That was Ankit questioning the BJP as to how long will it take to clean up the act. And there we could hear the MP saying that it will take about 21 years. By 2047 is when Gurugram will become world class. Let's talk about another incident that has shocked the nation. When asked to wait in a queue for darshan at a temple, we have a daughter of an MLA who got restless and slapped a cop on duty. The accused woman is the daughter of BJP MLA B. Suresh Gowda and the wife of a serving ACP of Karnataka. She lost her cool merely because she was asked to wait as far as darshan at the temple is concerned. She claimed she had VIP darshans and she wasn't being allowed to go inside. In fact, an FIR has been filed against the lady for using criminal force to deter an officer on duty. In fact, Shivarur, my colleague, has had a conversation with the BJP MLA B. Suresh Gowda, apologizing for the actions of his daughter. Listen in.
8: This entire incident has been caught on camera, sir. Your daughter has slapped a police sub-inspector. There is no defense for this.
9: No, actually, what has happened is very important on that occasions. 12th is a Bhimana Amavasya. She had been to the temple of Mukkadatti Maramma temple in Srirangapatana. That time, she has taken two kids, small kids. One is 2 years old kid and another one is 3 years kid. Both the kids she has taken and went to the temple. After going to the temple, she requested the sub-inspector to let me inside the temple because 10 days back, the children have got the chicken pox. For that, she has requested to visit that priest to bless the things. So in that circumstance, she refused the sub-inspector. After that, 1 minute, some of the person has come. The sub-inspector has let them inside the temple. So my daughter is questioned. See, I have two kids. I am requesting you because they had a chicken pox 10 days back. So please let me also allow. That time, the odd discussion was happened. I don't know what happened after that. My daughter is telling she has abused me and my son-in-law and Aishwarya also. The two kids also she has abused. Then I could not tolerate the heated argument. All these mistakes has happened with the temple. We go for the peace.
8: But Mr. Gowda, you must be fair, sir. You must be fair. You are calling it a mistake. This police sub-inspector's complaint says that your daughter threw her weight around, says, do you know who I am? I am the daughter of an MLA. How can you stop me? Okay, all of that is in the subject matter of a thing. But you are calling what she did, what Aishwarya did, a mistake, sir. But that is the problem, sir. You are calling it a mistake. Let me tell you what sections under which your daughter has been booked in the FIR. Section 132, assault, criminal force to deter a public servant from discharge of duty. Section 1152, voluntarily causing hurt. Section 352, intentional insult, intended to provoke breach of peace. Section 351-2, criminal intimidation, threatening another person. These are not mistakes, Mr. Gowda. Come on.
9: Yes, no. So, whatever the police sub-inspector has made the mistake, that also you have lodged with the DIG complaint. You also lodged a complaint.
8: Let that be investigated separately.
9: Why? See, the incidence has happened. How it has happened is very important. Without the mistake of the police sub-inspector, my daughter would have not taken the call.
8: But what is the mistake that the cop made? Mr. Gowda, I'm seriously asking you. Sir, you are emotional because it is your family. I understand.
9: No, I am not emotional. I am giving you. See, whatever the police has done is the file, the FIR, you are justifying it.
8: I am not justifying. Sir, I am bashing. Yes. I am saying the police has not even taken action. I am questioning the police in this matter.
9: No, let the police see. Nobody is above the law in this country. So, whoever it is, everybody is abide the law and order of the country. That we will abide it. Whatever the action has been taken, I want to justify my daughter's. Whatever she has done is wrong. That I already said I am apologized it. And also my daughter is also apologized. That I told you on that day only not to prolong this because it emotionally it happens.
1: Switching tracks now to Maharashtra and the Maharashtra government's decision to make practical knowledge of Marathi, making it compulsory for auto rickshaw drivers

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.
3: Hindustan mile, Hindustan se.
4: Desh ka tire, JK tire.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा,
5: सबका

0: हुआ है, इतना झरझर हालत पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो गई है कि अब उसको एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत बहुत हद तक उसका पूरा नवीनीकरण होगा। तो ये सारी की सारी इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो विजन है और ये इस मामले में स्टॉक लिया है कि किस तरीके से पूरा की पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर हमको इरिगेशन डिपार्टमेंट को कैसे सुधारना है।
1: 12 साल से बीजेपी सरकार ने गुड़गांव को, गुरुग्राम शहर को, उन्होंने कभी वो उसे कूड़े का ढेर बनाते हैं, कभी वो गंदगी का गटर गुड़गांव को बनाते हैं और कभी बाढ़ का शहर बना देते हैं। 1400 करोड़ रुपया नायब सैनी जी आपने खर्च किया, बड़े बड़े दावे किए, परंतु हो क्या रहा है? स्कूल बसें फ्लड के पानी में, बारिश के पानी में बह रही हैं, बच्चे 6-6 घंटे वहां बैठे हैं, बच्चे किलकिला रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। जो हिंदुस्तान का आईटी हब है गुरुग्राम, वो हिंदुस्तान का बाढ़ हब बन गया है बारिश के पानी से।
2: And of course, the BJP is blaming the previous government of the Congress for the mess it's left for the BJP to clean up. How long will it take for the BJP to clean up that mess? Ankit Tyagi gets you this answer by questioning BJP MP Dharambir Singh. Listen in.
3: जनता भी ये सुनना चाहती है कि सरकार जो डबल ट्रिपल इंजन की बात करती है वो गुरुग्राम के लिए कर क्या रही है।
4: देखिए, हमने पीछे के इतिहास में जाना पड़ेगा। हरियाणा एक नया प्रदेश है। आज से 50-60 साल पहले ये केवल गुरुग्राम गांव था और धीरे धीरे हम दिल्ली के नजदीक होने की वजह से गुरुग्राम एक बहुत बड़ा शहर के तौर पर डेवलप हुआ। हमारा जो योजनाएं बननी चाहिए थी वो योजनाएं हम नहीं बना पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर रोड की चौड़ाई हो, पानी की निकासी हो, पब्लिक सेक्टर की कोई चीज बनानी हो, यूटिलिटी के लिए कोई जगह बनानी हो, हमें इस पानी को उठा के जमुना में डालने की बात हो, धीरे धीरे जो योजना बननी चाहिए थी वो योजना आज से नहीं, पिछले 50 साल के इतिहास में देखोगे तो एक गांव के लिए योजनाएं बनी थी, छोटे शहर के लिए बनी थी, आज सबसे बड़ा शहर बन चुका है। मौसम का परिवर्तन भी ऐसा है कि कभी बारिश बहुत लंबे टाइम पर होती थी, आज तो एक घंटे में इतना पानी पड़ जाता है कि उसका निकासी नहीं हो पाती।
3: तो सर, सारी गलती
4: ऐसे हालात में,
3: सारी गलती मौसम की है। सरकार आप कह रहे 12 सालों से सरकार 12 सालों से चलिए मैं आपकी बात समझ गया। आप मुझे ये बताइए कि पिछले 12 सालों में 3 ऐसी बड़ी योजनाएं जो गुरुग्राम की नालियों को, ड्रेनेज को ठीक करने के लिए सरकार ने की हो, 3 बड़ी योजना।
4: आज के दिन बहुत बड़े पानी, जो भी ऊपर का पानी था नए गुड़गांव का, उसको निकासी के लिए हमने उसी को पानी का नाले में डालने के लिए कंप्लीट काम चालू कर दिया। कंप्लीट
3: कब किया?
4: ठीक है कि वो जो नदी नाले, पुराने नाले थे हमारे, जिनको पहले ही आज से 20 साल पहले एनक्रोच कर दिया गया, छोटे नाले बना दिए गए, उन नालों को आज के हम उसी जगह पर चौड़ा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही।
3: समस्या अगर अभी आ रही है, सरकार अब यही कहती रहेगी, 60 साल पहले की बात करती रहेगी, तो फिर किस बात की सरकार, किस बात की आप लोग की तैयारी
4: है? हमारा नया मास्टर प्लान है, दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, गुड़गांव का हो, नए जो शहर बसाने हैं उनका मास्टर प्लान आप देखिए, इसलिए बाहर का इन्वेस्टर हमारे यहाँ आएगा 100% आएगा। पुराना गुड़गांव अगर हम देखें तो इसको सारे को तोड़ कर दोबारा नया कैसे बना देंगे?
3: बता दीजिए आज कितने साल लगेंगे? आपकी सरकार तीसरी बार बीजेपी की सरकार है वहां पर, उसके बाद अभी और कितनी बार बीजेपी की सरकार वहां पर बनेगी कि गुड़गांव के लोगों को ठीक ठाक पानी, सड़कें जो हैं वो बिना ठीक ठाक
4: वचनबद्ध है, 2047 तक ये देश सारा विकसित देश होगा, हरियाणा सबसे पहले विकसित होगा जिसमें गुड़गांव शामिल है।
3: 2047 तक हो जाएगा सर?
4: हाँ, 2047 तक आप देखना हमारा गुड़गांव भारत क्या होगा।
3: तो 2047 तक हो जाएगा, यानी कि गुड़गांव के लोगों को आराम से अभी 21 साल और बीजेपी को वोट देके आराम करना चाहिए कि 2047 तक कर ही देंगे आप?
4: और क्या मिली जो सरकार देना चाहेगा देश चाहता है कि सरकार,
3: अगर आपके पास सलूशन नहीं है तो फिर किसी और के पास जाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को कह रहे हैं 21 साल का इंतजार करो, 2047 में आपको सड़कें ठीक देंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा सर?
4: देश तेजी से बदल रहा है। जिस जो देश 12 साल पहले था आज वो देश नहीं है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर इस 12 साल में रेल का, सड़क का, निकासी का, पानी का, बिजली का बहुत बदलाव आया।
2: A price that is being paid by the residents and the common man on the streets of Gurugram that continue to get flooded because of the rain. With that, it's a wrap. Well, we are going to be getting you the very latest on the other side of this short break, getting you international news.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे।
4: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: देश का टायर जेके टायर।

0: Welcome back. Let's get you the very latest when it comes to the All About High Court's hijab verdict that's triggered a political row. The court has rejected a student's plea seeking permission to wear a hijab to school, holding that a student cannot claim an exemption from the prescribed uniform. The ruling has drawn sharp reactions. We have OAC who has come out and rejected that judgment, calling it an attack on Islam and saying it violates Articles 25 and 19 of the Constitution. While West Bengal Chief, we have the Minister from West Bengal, Dilip Ghosh, who has, however, backed that position that the court has taken in this hearing, saying everyone must follow the dress code of the school and that individual freedom cannot override institutional rules. The verdict has now reignited a war of words. This is a debate over school uniforms, religious expression and individual choices.
1: अलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया, हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी। हिजाब पहन के कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि साबरीमाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व फॉर जजमेंट है। अलाहाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस को अपना जजमेंट रोकना चाहिए था।
2: ड्रेस कोड जहाँ है, आर्मी में, पुलिस में, दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी महिलाएं अभी जा रही हैं, वो क्या हिजाब पहन के जाती हैं? इसलिए स्कूल का ड्रेस कोड सबको मान्य है। कोई अपना घर में पहने, सामाजिक अनुष्ठान में पहने, अपने मर्जी का पोशाक पहन सकता है, लेकिन जहाँ कानून है, व्यवस्था है, डिसिप्लिन की बात है, वहाँ तो उसको अलाउ नहीं किया जा सकता।
0: Switching tracks now to get you a very shocking incident that's come to light with a fire brigade vehicle that was used to wash the car of a BJP MLA in Singrauli. The video has gone completely viral on social media. This is a video that shows the fire brigade vehicle that has been used to wash this Innova car of Ram Nivas Shah of the BJP. He, of course, is from the Singrauli constituency in Madhya Pradesh's Energy Capital District. Outside his own official residence, this was a video that was taken. One can see three employees that were seen spraying water on the car, that Innova car, and that was using a fire brigade hose. And speaking to NDTV was the MLA. Let's listen in to what he had to say in his defense.
3: विधायक जी, इन दोनों सोशल मीडिया में आप खूब चर्चे हैं, आपकी गाड़ी धोने का भी मामला सामने आ गया है, क्या कुछ?
4: लोगों को ये समझना चाहिए, गाड़ी कोई विधायक जी धोते हैं? अब ऐसे विषय लेकर के लोग खड़े हो रहे हैं जिनकी जमानतें नहीं बची हैं, जो पार्षद के लायक व्यक्ति नहीं है, वो बात उठा रहे हैं, इनकी क्या हैसियत है? हम खुद ही नहीं समझते कि सिंगरौली में कांग्रेस बची हुई है। जब मेयर आम आदमी पार्टी की जीती तो ये चौथे स्थान पर जमानत नहीं बचा सके, पुनः नगर नियम आ रहा है तो फड़फड़ा रहे हैं, और कुछ नहीं।
3: तो क्या आप मानते हैं कि ये मुद्दा जो है सिर्फ कांग्रेस उठा रही है?
4: ये मुद्दा किसी के लायक नहीं है, उनके लायक है जो लायक ही नहीं है। हमने ड्राइवर को कहा कि जल्दी से आ जाना, तो हम तो थे ही नहीं, हम क्या जाने, हम क्या कोई गाड़ी धुलाई रहे।
3: फायर ब्रिगेड की गाड़ी किसी ने बुलाया होगा यहाँ पे या कैसे खड़ी?
4: अब ये तो नगर नियम के लोग जाने, नगर नियम के टंकियों में पानी नहीं था शायद, तो शायद ऊपर में पानी नहीं जाता, तो नगर नियम अध्यक्ष और महापौर के यहाँ पानी डालने आई।
0: Big news coming in, and this is from the state of Karnataka. We have the minister who had offered to step down from the cabinet of the new chief minister, DK Shivkumar, but he seems to be hopeful that the Congress leadership will be backing him through this phase. The BJP, of course, on their side is planning to do a Pad Yatra, and that is in order to mount the pressure and demand the resignation of Nagendra. This is after he has been embroiled and he hasn't got that clean chit when it comes to the Valmiki scam to the tune of 89 crore rupees. There are many in the Congress leadership who feel that the continuation when it comes to the minister who was earlier dropped by Siddaramaiah, back in 2024, but then, you know, he is part of the new cabinet of the new chief minister, DK Shivkumar. Now, many feel that this could have a negative impact when it comes to the party, and therefore, they are also, in fact, wanting that Nagendra should perhaps take the step that he was, in fact, offering to step down. We have Deepak, my colleague, joining us in order to get us more details on this. Deepak, a lot of uncertainty that is looming large because DK Shivkumar, Priyank Kharge, all have been coming out and backing the minister. And this morning, when he offered to step down, he doesn't seem to be too serious about actually making that move.
5: Well, we should note that at this point in time that the news of him likely

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
3: रियली
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है?
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: Food is music. Synchrony of so many elements. I am a conductor of chaos. Chef Jagar Anand at NDTV.

0: कई सालों से वाटर लॉगिंग हो रही है और जो मेन रीज़न है वाटर लॉगिंग का वो यही है कि जो पुराने परंपरागत नाले थे जो पहाड़ से पानी को ले जाया करते थे जमुना तक, उनके ऊपर डेवलपमेंट हो गई है और वो कांग्रेस के टाइम की डेवलपमेंट हुई हुई आज तक हम संभाल रहे हैं। एक ही तरीका है इसको अब आज के दिन ठीक करने का कि जहाँ पर ही पुराने नाले थे उसको अंडरग्राउंड टनल्स बना करके, जैसे कि हम मेट्रो के लिए बनाते हैं, उस तरह के टनल बना करके इस पुराने पानी को, इस पानी को उसी पुराने रास्तों के मार्फत भेजें, तो उसके ऊपर सरकार काम कर रही है, उसके लिए पैसा हम तजवीज़ करवा रहे हैं।
1: सीएम साहब और सारे के सारे मीटिंग्स लेते रहते हैं और क्योंकि लंबा टाइम की बात है तो इसमें सारी की सारी जो इसके सॉल्यूशंस भी निकालने में टाइम लगेगा। मैं अपने विभाग के बारे में भी जैसे आपको बताऊं, इरिगेशन डिपार्टमेंट का इतना लंबे टाइम से काम नहीं हुआ है, इतना झड़झड़ हालत पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो गई है कि अब उसको एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत बहुत हद तक उसका पूरा नवीनीकरण होगा। तो ये सारी की सारी इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो विजन है और ये इस मामले में स्टॉक लिया है कि किस तरीके से पूरा की पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर हमको इरिगेशन डिपार्टमेंट को कैसे सुधारना है।
2: 12 साल से बीजेपी सरकार ने गुड़गांव को, गुरुग्राम शहर को, उन्होंने कभी वो उसे कूड़े का ढेर बनाते हैं, कभी वो गंदगी का गटर गुड़गांव को बनाते हैं और कभी बाढ़ का शहर बना देते हैं। 1400 करोड़ रुपया नायब सैनी जी आपने खर्च किया, बड़े बड़े दावे किए, परंतु हो क्या रहा है? स्कूल बसें फ्लड के पानी में, बारिश के पानी में बह रही हैं, बच्चे 6-6 घंटे वहां बैठे हैं, बच्चे किलकिला रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। जो हिंदुस्तान का आईटी हब है गुरुग्राम, वो हिंदुस्तान का बाढ़ हब बन गया है बारिश के पानी से।
3: मेरे को सूचना मिली, मैं एक फोटो के आसपास ही था तो मेरे जवान ने रिपोर्ट दी कि तो जमीन धस गया है, तुरंत मौके पर आया हूँ। उस टाइम छोटा गड्ढा था और मैंने इसके बाद में तुरंत बैरिकेडिंग कर दी और अपने सीनियर अधिकारियों को फोन कर दिया और एमसीजी और जीएमडी को मैंने फोन कर दिया और स्थिति को उससे मौके संभाल लिया था। हाँ, पाइपलाइन टूट गया है, वो दिख रहा है पाइपलाइन टूट गया।
4: All right, so as always, a political blame game has broken out. But let's take a look at the ground reality. NDTV reports from Gurugram's very arterial IFFCO chalk, where a massive section of the road has caved in after the heavy rainfall. Let's take a closer look at that crater and the damage it has caused.
5: Present at one of the most important intersections in Gurugram, IFFCO chalk, and behind me you can see the very road which got severely affected in the rains in last 2 days. An important intersection of the IFFCO chalk wherein a huge section of the road was caved in suddenly yesterday after 2 days of severe rain. This particular opening, a 10-foot wide sinkhole, disrupted traffic towards towards this particular U-turn flyover. Teams from GMDA and National Highways Authority of India reached this site soon after the incident was reported. You can see the visuals, how the entire area has been completely cordoned off. As soon as the information was given to the traffic police officials and the officials and the authorities, the entire area was cordoned off. The traffic was diverted. However, the work has begun. You can see the filling of this entire pit, the entire road which has caved in. The work is in progress. Traffic police officials have been put in place. A police official has also been put in place to look after the entire filling in of this pit. However, this raises a very severe question, because back in July, when during the rainy season, we saw what happened at NH-48, and now this is another case within a span of just 1 month that an entire section of the road caved in suddenly yesterday.
4: All right, let's go across to Soumya now for more on this story and this situation. And Soumya, take us through what the reactions have been by the authorities ever since this crisis on Monday and then on Tuesday with this massive sinkhole.
5: Yes, well, Gargi correctly put, a blame game has begun when it comes to the conditions of the roads there in Gurugram and the civic apathy being at its peak. Now, if we talk about this particular incident in general, the authorities have not been able to establish one particular reason as to what really happened, which led to this entire section of the road being caved. They're saying that it could be possible that there is one such pipeline inside the road which was leaking or which was completely damaged, because of which what we saw happening yesterday at that particular intersection at IFFCO Chowk, which happens to be the one of the busiest intersections of Gurugram. Now a blame game has begun between BJP and Congress. BJP, which is there in power for over a decade now for three consecutive terms, is saying that it is because of the work that has been done in the Congress era. We have been seeing the problems persisting over the years every monsoon season. However, this claim is falling flat on BJP because remember, right before the start of the monsoon season this year, we had several high-profile meetings taking place in Haryana, which were also actually headed by the CM himself. Budgets were passed saying that this year the situation will be different. So now the ground reality actually differs, and which has led to, again, a new blame game. Back to you.
4: All right, Soumya, thanks so much for joining us with those details. And my colleague Ankit spoke with BJP MP Dharambir Singh, who instead spoke about Gurugram's Vikas vision for 2047. Listen in.
6: जनता भी ये सुनना चाहती है कि सरकार जो डबल ट्रिपल इंजन की बात करती है वो गुरुग्राम के लिए कर क्या रही है।
7: देखिए, हमने पीछे के इतिहास में जाना पड़ेगा। हरियाणा एक नया प्रदेश है। आज से 50-60 साल पहले ये केवल गुरुग्राम गांव था, और धीरे धीरे हम दिल्ली के नजदीक होने की वजह से गुरुग्राम एक बहुत बड़ा शहर के तौर पर डेवलप हुआ। हमारा जो योजनाएं बननी चाहिए थी वो योजनाएं हम नहीं बना पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर रोड की चौड़ाई हो, पानी की निकासी हो, पब्लिक सेक्टर की कोई चीज बनानी हो, यूटिलिटी के लिए कोई जगह बनानी हो, हमें इस पानी को उठा के जमुना में डालने की बात हो, धीरे धीरे जो योजना बननी चाहिए थी वो योजना आज से नहीं, पिछले 50 साल के इतिहास में देखोगे तो एक गांव के लिए योजनाएं बनी थी, छोटे शहर के लिए बनी थी, आज सबसे बड़ा शहर बन चुका है। मौसम का परिवर्तन भी ऐसा है कि कभी बारिश बहुत लंबे टाइम पर होती थी, आज तो एक घंटे में इतना पानी पड़ जाता है कि उसका निकासी नहीं हो पाती।
6: तो सर, सारी गलती
7: ऐसे हालात में,
6: सारी गलती मौसम की है। सरकार आप कह रहे 12 सालों से सरकार 12 सालों से सरकार 12 सालों से
7: चलिए
6: मैं आपकी बात समझ गया। आप मुझे ये बताइए कि पिछले 12 सालों में तीन ऐसी बड़ी योजनाएं जो गुरुग्राम की नालियों को, ड्रेनेज को ठीक करने के लिए सरकार ने की हो, तीन बड़ी योजना।
7: आज के दिन बहुत बड़े पानी, जो भी ऊपर का पानी था नए गुड़गांव का, उसको निकासी के लिए हमने उसी को पानी का नाले में डालने के लिए कंप्लीट काम चालू कर दिया। कंप्लीट
6: कब किया?
7: ठीक है कि वो जो नदी नाले, पुराने नाले थे हमारे, जिनको पहले ही आज से 20 साल पहले एनक्रोच कर दिया गया, छोटे नाले बना दिए गए, उन नालों को आज के हम उसी जगह पर चौड़ा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही।
6: समस्या अगर अभी आ रही है, सरकार अब यही कहती रहेगी, 60 साल पहले की बात करती रहेगी, तो फिर किस बात की सरकार, किस बात की आप लोगों की तैयारी?
7: हमारा नया मास्टर प्लान है, दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, गुड़गांव का हो, नए जो शहर बसाने हैं उनका मास्टर प्लान आप देखिए। इसलिए बाहर का इन्वेस्टर हमारे यहाँ आएगा 100% आएगा। पुराना गुड़गांव अगर हम देखें तो इसको सारे को तोड़कर दोबारा नया कैसे बना देंगे?
6: बता दीजिए आज की कितने साल लगेंगे आपकी सरकार, तीसरी बार बीजेपी की सरकार है वहां पर, उसके बाद अभी और कितनी बार बीजेपी की सरकार वहां पर बनेगी कि गुड़गांव के लोगों को ठीक ठाक पानी, सड़कें जो हैं वो बिना ठीक ठाक
7: मिले? वचनबद्ध है 2047 तक ये देश सारा विकसित देश होगा, हरियाणा सबसे पहले विकसित होगा जिसमें गुड़गांव शामिल है।
6: 2047 तक हो जाएगा सर?
7: हाँ, 2047 तक आप देखना हमारा गुड़गांव भारत क्या होगा।
6: तो 2047 तक हो जाएगा, यानी कि गुड़गांव के लोगों को आराम से अभी 21 साल और बीजेपी को वोट देके आराम करना चाहिए कि 2047 तक कर ही देंगे आप?
7: और क्या मिली जुली सरकार देना चाहेगा देश, तो देश चाहता है कि
6: अगर

0: it's a festival. That is not a question that is ever asked and should not be asked. But it always comes to a woman. But is this a right move is the question. Did Jeeva do a right thing?
1: Right. And Jeeva, the, you know, the whose advertisement this was actually talking about, you know, the dog being a part of the family. We're now joined on the phone line by Brinda Adige, activist. Brinda, your reaction to, you know, this whole hullabaloo over this particular ad, and now the brand Jeeva has actually pulled down this ad, given it's become, you know, political controversy as well.
2: You're absolutely right. It's a political controversy, and BJP wants to stay away from it and not take responsibility for the retrograde mindset of one of their politicians. How is it that someone makes these kind of statements which are so much against women, saying that women's achievement, constitution, equality, and here the woman has no agency of her own to choose what clothes she wants to wear or how an advertisement wants to portray Raksha Bandhan. Who is Kangana that she must be making these comments? Any comment made by her is a public comment, and BJP must take note of it and responsibility for it. They cannot wave it out and say it is a personal comment, so we have nothing against it, when we know how these narratives are set to put down women, to continuously tell women that you have no choice, no agency. The constitution which gives you the supreme power of being a sovereign citizen, I, based on my retrograde patriarchal sexist mindset, will not allow you to continue to make your choices. Very sad that the ad has been taken down, but let us call out Kangana and BJP for what they are, not willing to take responsibility for retrograde mindset.
1: That's right, and it became a bigger political issue perhaps with Rahul Gandhi wading into it, supporting Priti Sanon, you know, saying what a woman wears, what she does and where she goes is her choice. Stop trolling women for exercising that freedom with the hashtag smash the patriarchy. And then you've had Kangana Ranaut, the BJP MP, hit out over that. So perhaps this brand Jeeva just didn't want all this, you know, negative publicity and controversy around it, and just choose to withdraw that ad so they wouldn't have to face any more, you know, backlash over it.
2: No, it's not so much as Rahul Gandhi talking about smash patriarchy, as much as people talking and saying that this is not my culture. This is not what we stand for. We are the land of Kama Sutra. What is it that we don't stand for? We are a land which has in every temple sculptures that celebrate a woman's body. Where has this mindset come? Where has this retrograde, misogynistic talk of women cannot choose to wear what they want to wear? This is absolute patriarchy, and I think it is time that we start calling this out rather than hiding behind lies and narratives that say that this is not our culture. It may not be the culture of a few retrograde, but this is certainly the choice of every woman who is considered a sovereign citizen under the Constitution in India.
1: All right, Brinda Adige, we'll leave it there. Thank you so much for joining us as always on NDTV. So let's take you through this entire controversy. The jewelry brand Jeeva has now pulled down this particular ad that has become such a talking point. And it all started with a row between BJP MP Kangana Ranaut and actor Kriti Sanon over the Raksha Bandhan advertisement. And remember, this was something that was a talking point on social media, but it really got traction after Kangana's comments. And then it drew in Rahul Gandhi. He backed Kriti Sanon, saying what a woman wears, does, or where she goes is her choice, and women should not be trolled for exercising their freedom. Now, this came after Kangana had questioned Kriti's outfit, asking why a woman would tie a rakhi in a bikini or undergarments. That's how she described it. Kriti Sanon then hit back, asking when society would stop telling women what to wear, saying the culture is in the mind, not in the neckline. But now Kangana Ranaut shared a BJP handles post mocking Rahul Gandhi over the patriarchy debate. Importantly, that post was shared before Rahul's remarks and was not a direct response to him.
3: जिसके घर खुद शीशे के हों, दूसरे के मकान पे पत्थर नहीं डाल मारते हैं। कंगना रनौत अपनी तस्वीरों को देख लें और किस तरह से बॉडी एक्सपोज करके जगह बनाया है। अगर कोई भी नैतिकता रह जाए होगी तो कृति सेनन से माफ़ी मांगेंगे। और दूसरी बात है, पैट्रियार्की मैट्रियार्की ये कंगना रनौत के समझ में नहीं आएगा। ये जो जो बुद्धि जिसके पास होती है और जो फ्रीडम को समझता है, जो पढ़ा लिखा है, उसी को समझ में आएगा। तो इसका जवाब मैं देना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि जो मानसिक स्तर है, समझदारी का स्तर है कृति कंगना रनौत का बहुत बहुत नीचे स्तर पर है।
4: एक उन्होंने अपने आप को देखा है, कैसी कैसी फिल्में की हैं उन्होंने, तब बताएं बातें। ऐसी बातें मत करें वो जो उनके ऊपर ही खुद लागू हो जाए। उन्होंने अपने आप को देखा है, कैसी कैसी फिल्में की हैं उन्होंने, तब बताएं बातें। ऐसी बातें मत करें वो जो उनके ऊपर ही खुद लागू हो जाए।
5: ये भाई है कंगना रनौत का तो मुझे पूछो ही मत यार, वो हर बार आके इसी तरह अनाप शनाप बकवास बातें करती है। अरे भाई तुम्हारे अंदर झांको ना, तुम क्या हो, दूसरे की लाइफ में अंदर क्यों तुम इंटरफेयर कर रहे हो? थोड़ी सी पब्लिसिटी लेने के लिए आप रोज अनाप शनाप बकवास करते, महिलाओं के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं। आप अपने आपकी वीडियो कितने वायरल है वो देखिए। आपकी इसी हरकतों की वजह से थप्पड़ पड़ गया था, आप वो थप्पड़ की गूंज भूल गए क्या? आप अपने आप को समझते हो झांसी की रानी? अरे आप नकली घोड़े के ऊपर बैठ के तलवार फहराने से उस ओरिजिनल झांसी की रानी नहीं बन जाएंगे। आपको पब्लिसिटी चाहिए, अच्छा काम करिए, काम करेंगे, नाम होगा तो काम नाम होगा आपका, पब्लिसिटी मिलेगा। लेकिन इस तरह से हर दिन आए दिन कुछ ना कुछ बकवासबाजी करके लाइमलाइट लेना, और वो भी तो बाबा रामदेव की उनके साथ फंस गई है, होने दो आपस में फाइट, दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा रहे, तो ये क्या उसके बारे में बोलना सही बात नहीं है। उनको आदत है बकवास करने की, छोड़ो उसको।
6: एक दूसरे को महिलाओं का मान सम्मान हमने रखना चाहिए, फिर वो एक्टर हो एक्ट्रेसेस हो, एक दूसरे के बारे में टिप्पणी, इस प्रकार की टिप्पणी करना, बिलो द बेल्ट टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझती। दोनों एक्ट्रेस अपने अपने एक कामयाब एक्ट्रेसेस हैं, अपने अपने एक कामयाब सिद्ध किया है उन्होंने, तो क्यों ऐसी गरिमा करें एक दूसरे को? और राजकीय मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी करना मैं नहीं समझती ठीक बात है।
7: मैं ये कहना चाहूँगा, कंगना रानी इतनी अच्छी, इतनी बड़ी, इतनी मैच्योर बीजेपी पार्टी जो है उसमें आप मेंबर हो, और बड़े यत्न से बड़े प्रयत्न से आप जीत के आई हो हिमाचल से, अभी आपका फर्ज बनता है थोड़ी थोड़ी प्यारी प्यारी मैच्योर बातें करो ना यार, ये किसी के कपड़ों के ऊपर जोबा नहीं देता है। कम ऑन, यू आर अ गुड एक्टर, यू मस्ट बी अ गुड पर्सन ऑल्सो। आई थिंक इट इज़ इट विल बी अप्रोप्रिएट कि अगर आप यहाँ से निकल के थोड़ा सा और मैच्योर बात कीजिए जिससे कि बीजेपी को फायदा हो।
8: देखिए आदमी किसी की तरफ एक वोट का इशारा करता है तो तीन वोट उसके तरफ भी होते हैं। देखिए आदमी किसी की तरफ एक वोट का इशारा करता है तो तीन वोट उसके तरफ भी होते हैं।
9: के जमाने में सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए हम कोई भी भाषा को उपयोग कर सकते हैं। कंगना एक फिल्म एक्ट्रेस भी है और साथ ही साथ आज वो एक पार्लियामेंट में एक सदस्य भी है। आज उसका एक जो वजूद है वो एक सिर्फ एक एक्ट्रेस का नहीं है, वो आज एक पार्लियामेंट की एक सामने एक चेहरा बनती है कि हाँ ये MP है हमारे हिंदुस्तान की और BJP की है। आज आप ही को अपनी भाषा का नियंत्रण नहीं रहा तो आप दूसरों को कहते हो कि क्यों मुझे बोलें, जब आप अपनी ऐसी दुरुपयोग करते हो भाषा का, सस्ती कॉपी बोलना एक औरत को, क्या ये सही भाषा है? जब आपके लोग कुछ बोलते हैं बी ग्रेड से आई है सी ग्रेड से आई है और क्यों बैठी है पार्लियामेंट में, तब तो आपको बड़ा क्रोध आता है कि क्यों बोला जा रहा मेरे लिए, लेकिन आप फिर दूसरों के लिए क्यों बोल रहे हो?
1: So after this entire controversy and brouhaha, now Jeeva, the jewelry brand, has pulled that ad that has caused so much back and forth and even become a political controversy. Well, on to news now from Karnataka. Nagendra's political future hangs in the balance as pressure mounts for his exit from the Karnataka cabinet. Sources have told NDTV that Karnataka minister B. Nagendra is set to resign, with the Congress leadership now weighing his exit from the cabinet. However, Nagendra is playing down these reports, saying no decision has been taken and there has been no discussion on his resignation yet. The minister is facing mounting pressure from the BJP, which has been demanding his removal over the alleged Valmiki scam and fund irregularity, saying that he has not got a clean chit in that scam yet. Meanwhile, Congress sources say Nagendra remains hopeful of backing up from the party leadership, even as some within the party fear his continuation could hurt party politically. His close aides are also urging him to stay on.
10: An official statement of yours about the information that you're likely to step down as minister.
11: No,
10: tell us
11: no, no, no, no, not decided, there is a false

0: And from Karnataka to UP now, the Allahabad High Court's hijab verdict triggered a political row. The court rejected a student's plea seeking permission to wear a hijab to school, holding that a student cannot claim an exemption from the prescribed uniform. The ruling has drawn sharp reactions. AIMIM chief Asaduddin Owaisi rejected the judgment, calling it an attack on Islam and saying it violates Articles 25 and 19 of the Constitution. West Bengal Minister Dilip Ghosh, however, backed the court's position, saying that everyone must follow the school uniform and dress codes, and individual freedom cannot override institutional rules. The verdict has now reignited the debate over school uniforms, religious expression, and individual choice. Let's listen in to what has been said.
1: Allahabad High Court ka judgment aaya. Hamari ek beti school mein hijab pehen rahi thi. Hijab pehen ke court ne keh diya ki hijab aap nahi pehen sakte. मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं. क्यों? क्योंकि साबरीमाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व फॉर जजमेंट है. अलाहाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस को अपना जजमेंट रोकना चाहिए था.
2: जेस कोर्ट जहां है, आर्मी में, पुलिस में, दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी महिलाएं अभी जा रही हैं. वो क्या हिजाब पहन के जाती हैं? इसलिए स्कूल का ड्रेस कोड सबको मान्य है. कोई अपना घर में पहने, सामाजिक अनुष्ठान में पहने, अपने मर्जी का पोशाक पहन सकता है. लेकिन जहां कानून है, व्यवस्था है, डिसिप्लिन की बात है, वहां तो उसको अलाउ नहीं किया जा सकता.
3: देखिए, मैं कोई आलिम नहीं हूं, लेकिन जो हालात हैं, मुझे एक चीज़ सब समझ में नहीं आती. सर ढकें तो प्रॉब्लम, सर ना ढकें तो प्रॉब्लम. तो यहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है.
4: सर ढकना चाहिए, हिजाब पहनना चाहिए,
3: ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है. सर ढकना के भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है. आप उसको हिजाब नाम दे दें तो वो मुसलमान हो जाता है, लेकिन पल्लू नाम दे दें तो वो हिंदू हो जाता है. तो बात तो सर ढकने की है ना.
5: देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि हिजाब इस्लाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. ठीक है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, मुझ जैसी भी, जो अपनी मर्जी से हिजाब पहने ना पहने, लेकिन संविधान ने सबको हक दिया है कि आप अपनी मर्जी से अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं और धर्म ना भी फॉलो करें. आज इतनी महिलाएं हैं जो गांव में घूंघट करती हैं, ठीक है, इतनी महिलाएं हैं जो सर पे दुपट्टा रखती हैं, और हर धर्म जाति में अपना अपना अलग कल्चर होता है. तो मुझे लगता नहीं है कि किसी का भी हक बनता है कि इन सब में आप दखलअंदाजी करें.
0: NDTV World is set to bring together some of the most influential voices from India and Nepal for a landmark dialogue in Kathmandu tomorrow. The India-Nepal dialogue will mark the launch of NDTV Anviksha, Ideas Across Borders, a new global conversation series examining how countries see themselves, their neighbours and a rapidly changing world.
6: NDTV for the last 30 years has been taking you on a journey all across the country, from summits to Jai Jawan to several such key marquee events. But NDTV World, for the first time, is now heading outside India. And with me is Sikta Dev, who will be also taking us through this new journey of NDTV World Anviksha. We've reached the heights of Himalayas and we are standing right outside the Kathmandu airport. From top politicians from Nepal and India to actors and actresses to leaders who are making economic disruptions. This is a new foundation of a new Nepal, but also a new beginning of an India-Nepal brotherhood.
0: Well, with that, time for us to slip into a short break. More news and updates on the other side. Stay with us.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा प्योर मसाला।
4: फूड इज म्यूजिक, सिंक्रनी ऑफ सो

0: at least optics-wise.
1: Absolutely, and Deepak will give you all the updates from the ground, the inside track on what's going to happen next. Deepak, as always, thank you for joining me here on Breaking Ground. The Allahabad High Court's hijab verdict has triggered a political row. The court has rejected a student's plea seeking permission to wear a hijab to school, holding that a student cannot claim an exemption from the prescribed uniform. The ruling has drawn sharp reactions. AIMIM chief Asaduddin Owaisi has rejected the judgment, calling it an attack on Islam and saying it violates Articles 25 and 19 of the Constitution. West Bengal Minister Dilip Ghosh, however, backed the court's position, saying everyone must follow school dress codes and that individual freedom cannot override institutional rules. The verdict has now reignited the debate over school uniforms, religious expression and individual choice.
2: अलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया, हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी, हिजाब पहन के कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि साबरीमाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व फॉर जजमेंट है। अलाहाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस को अपना जजमेंट रोकना चाहिए था।
3: ड्रेस कोड जहाँ है, आर्मी में, पुलिस में, दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी महिलाएं अभी जा रही हैं, वो क्या हिजाब पहन के जाती हैं। इसलिए स्कूल का ड्रेस कोड सबको मान्य है, कोई अपना घर में पहने, सामाजिक अनुष्ठान में पहने, अपने मर्जी का पोशाक पहन सकता है, लेकिन जहाँ कानून है, व्यवस्था है, डिसिप्लिन की बात है, वहाँ तो उसको अलाउ नहीं किया जा सकता।
4: देखिए, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, लेकिन जो हालात हैं, मुझे एक चीज़ सब समझ में नहीं आती। सर ढकें तो प्रॉब्लम, सर ना ढकें तो प्रॉब्लम, तो यहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है।
5: सर ढकना चाहिए, हिजाब पहनना चाहिए,
4: ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। सर ढकना के भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। आप उसको हिजाब नाम दे दें तो वो मुसलमान हो जाता है, लेकिन पल्लू नाम दे दें तो वो हिंदू हो जाता है। तो बात तो सर ढकने की है ना।
6: देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि हिजाब इस्लाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, मुझ जैसी भी, जो अपनी मर्जी से हिजाब पहने ना पहने, लेकिन संविधान ने सबको हक दिया है कि आप अपनी मर्जी से अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं और धर्म ना भी फॉलो करें। आज इतनी महिलाएं हैं जो गांव में घूंघट करती हैं, ठीक है, इतनी महिलाएं हैं जो सर पे दुपट्टा रखती हैं, और हर धर्म जाति में अपना अपना अलग कल्चर होता है। तो मुझे लगता नहीं है कि किसी का भी हक बनता है कि इन सब में आप दखल अंदाजी करें।
1: Well, Kiran Rijiju swim in a river in Arunachal has stirred political waters in Delhi. On Tuesday, Pawan Khera took a jibe at Rijiju over him swimming and his attire, calling him half naked and mocking him for invoking Rahul Gandhi while taking that swim, alleging that Rahul has gone under BJP's skin. Hitting back at Khera, Rijiju wrote that he is a first-time nominated MP and that he should make such indecent remarks. He further took a jibe at Khera, saying that he shall report Khera to Assam's chief minister. Rijiju claimed that it was Congress supporters who invoked Rahul looking at Rijiju's swimming and that he was just replying to those tropes.
7: Mudda hai naujawanon ka, mudda hai pellet gun kisne order diya chalane ka. इस जवाब से पूरा कैबिनेट बचने की कोशिश कर रहा है और किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। हम अपने मुद्दे पर हैं। पैलेट गन्स किसने चलवाए? सिंपल एक क्वेश्चन है, उसको बार बार अलग अलग ढंग से ये लोग मुद्दा पर से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे फायदा थोड़ी है। पैलेट गन्स किसने चलवाए, ये सवाल है, पूरा देश पूछ रहा है। उत्तर तो लोगों को चाहिए ना। अभी भी FIR के लिए राहुल गांधी को 7 घंटे तक धरना देना पड़ा, तब जाकर FIR हुई। देश की राजधानी की ये हालत है। सोचिए, अगर राहुल गांधी नहीं आते वहां तो क्या FIR होती? पिछले कई हफ्तों से इंतजार हो रही थी, क्या FIR हुई? नहीं हुई।
1: The other big story, and this is going viral, is a question that we ask before we even tell you more about the details of the story. Who ordered a fire tender official to wash a BJP MLA's car? That's the question after a viral video from Singrauli shows a fire brigade personnel washing Ram Nivas Shah's Innova outside his government residence. A fire tender meant for emergencies appears to have taken on a rather unusual assignment, giving the MLA's SUV a wash. The visuals have triggered questions over the alleged use of government resources for personal work. The MLA says he wasn't present and had no knowledge of this incident.
8: विधायक जी,

0: इन दोनों सोशल मीडिया में आप खूब चर्चे हैं, आपकी गाड़ी धोने का भी मामला सामने आ गया है, क्या कुछ?
1: लोगों को ये समझना चाहिए, गाड़ी कोई विधायक जी धोते हैं।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: फूड इज म्यूजिक, सिंक्रनी ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स। आई एम अ कंडक्टर ऑफ केओस। शेफ जागर आनंद एट एनडीटीवी वॉक द टॉक।
1: या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Rajkol, covering

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: बोर्ड का आदर करना चाहिए, जरूर मुस्लिम समाज की भावना में थोड़ी सी ठेस पहुंच सकती है।
1: ड्रेस कोड जहां है, आर्मी में, पुलिस में, दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी महिलाएं अभी जा रही हैं, वो क्या हिजाब पहन के जाती हैं। इसलिए स्कूल का ड्रेस कोड सबको मान्य है, कोई अपना घर में पहने, सामाजिक अनुष्ठान में पहने, अपने मर्जी का पोशाक पहन सकता है, लेकिन जहां कानून है, व्यवस्था है, डिसिप्लिन की बात है, वहां तो उसको अलाउ नहीं किया जा सकता।
2: देखिए, मैं कोई आलिम नहीं हूं, लेकिन जो हालात है, मुझे एक चीज़ सब समझ में नहीं आती, सर ढकें तो प्रॉब्लम, सर ना ढकें तो प्रॉब्लम, तो यहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है।
3: सर ढकना चाहिए, हिजाब पहनना चाहिए,
2: ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। सर ढकना के भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। आप उसको हिजाब नाम दे दें तो वो मुसलमान हो जाता है, लेकिन पल्लू नाम दे दें तो वो हिंदू हो जाता है। तो बात तो सर ढकने की है ना।
4: देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि हिजाब इस्लाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, मुझ जैसी भी, जो अपनी मर्जी से हिजाब पहने ना पहने, लेकिन संविधान ने सबको हक दिया है कि आप अपनी मर्जी से अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं और धर्म ना भी फॉलो करें। आज इतनी महिलाएं हैं जो गांव में घूंघट करती हैं, ठीक है, इतनी महिलाएं जो सर पे दुपट्टा रखती हैं, और हर धर्म जाति में अपना अपना अलग कल्चर होता है। तो मुझे लगता नहीं है कि किसी का भी हक बनता है कि इन सब में आप दखलंदाजी करें।
5: Moving on to a story that has gone viral, raising an important question: who ordered a fire tender and its personnel to wash a BJP MLA's car? That's the question after a viral video from Singrauli shows a fire brigade personnel washing Ram Nivas Shah's Innova outside his government residence. A fire tender meant for emergencies appears to have taken on a rather unusual assignment here, giving the MLA's SUV a wash. The visuals have triggered questions over the alleged use of government resources for personal work. The MLA in question says he wasn't present and had no knowledge of this incident.
6: विधायक जी, इन दोनों सोशल मीडिया में आप खूब चर्चे हैं, आपकी गाड़ी धोने का भी मामला सामने आ गया है, क्या कुछ?
7: लोगों को यह समझना चाहिए, गाड़ी कोई विधायक जी धोते हैं? अब ऐसे विषय लेकर के लोग खड़े हो रहे हैं जिनकी जमानतें नहीं बची हैं, जो पार्षद के लायक व्यक्ति नहीं है, वो बात उठा रहे हैं, इनकी क्या हैसियत है? हम खुद ही नहीं समझते कि सिंगरौली में कांग्रेस बची हुई है। जब मेयर आम आदमी पार्टी की जीती तो ये चौथे स्थान पर जमानत नहीं बचा सके, पुनः नगर नियम आ रहा है तो फड़फड़ा रहे हैं, और कुछ नहीं।
6: तो क्या आप मानते हैं कि ये मुद्दा जो है सिर्फ कांग्रेस उठा रही है?
7: ये मुद्दा किसी के लायक नहीं है, उनके लायक है जो लायक ही नहीं है। हमने ड्राइवर को कहा कि जल्दी से आ जाना, तो हम तो थे ही नहीं, हम क्या जाने, हम क्या कोई गाड़ी तो नहीं रहे।
6: फायर ब्रिगेड की गाड़ी किसी ने बुलाया होगा यहाँ पे या कैसे खड़ी?
7: अब ये तो नगर नियम के लोग जाने, नगर नियम के टंकियों में पानी नहीं था शायद, तो शायद ऊपर में पानी नहीं जाता, तो नगर नियम अध्यक्ष और महापौर के यहाँ पानी डालने आई।
5: NDTV World is set to bring together some of the most influential voices from India and Nepal for a landmark dialogue in Kathmandu tomorrow. The India-Nepal dialogue will mark the launch of NDTV Anviksha, Ideas Across Borders, a new global conversation series examining how countries see themselves, their neighbors, and a rapidly changing world. Kathmandu becomes the setting for a new conversation on India and Nepal. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders, begins with an India-Nepal dialogue, bringing together political leaders, policy makers, diplomats, business leaders, strategic thinkers, and voices from culture and sport. The conversation will look beyond the conventional framework of bilateral ties and instead ask a larger question. How does Nepal see itself, its future, and its place in a changing region? Among the prominent voices from Nepal are Foreign Affairs Minister Shiseer Khanal, Finance Minister Dr. Swarnim Wagle, Nepali Congress President Gagan Thapa, and Sumnima Udas, Chair of the International Relations and Tourism Parliamentary Committee.
8: We are turning a page in Nepal's political economy. On the bedrock of good governance and bold reforms, we want to accelerate the pace of economic catch-up.
9: In rapidly changing global landscape, foreign policy must be anchored in strategic clarity and shared prosperity.
10: Beyond statecraft and formal treaties lies the true heart of our partnership, our deeply rooted cultural diplomacy and people-to-people bond.
11: From manufacturing to sustainable infrastructure, Nepalese enterprises is ready to expand and compete globally. I look forward to sharing our vision for industrial cooperation at NDTV World Aviksha.
12: Seamless trade and strategic

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: फूड इज म्यूजिक, सिंक्रनी ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स। आई एम अ कंडक्टर ऑफ केओस। शेफ गागर आनंद एट एनडीटीवी वॉक द टॉक।
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
3: Across the country,
4: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: सबका राजा आके और मसाला।
3: फूड इज म्यूजिक, सिंक्रनी ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स। आई एम अ कंडक्टर ऑफ केओस। शेफ जागर आनंद एट एनडीटीवी वॉक द टॉक।
4: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
5: Across the country,
6: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul. Covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
4: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
6: 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is

0: levels of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters. The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
1: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right and Center.
0: Hard facts.
1: War struck country.
0: Hard questions.
1: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
2: Welcome back. Let's get you the latest and see all about the High Court's hijab verdict that has triggered a political row. The court has rejected a student's plea seeking permission to wear a hijab to school, holding that a student really cannot claim an exemption from the prescribed uniform at schools. The ruling has drawn sharp reactions. We have Oasi there, who has rejected this judgment, calling it an attack on Islam, saying it violates Articles 19 and 25 of the Constitution. And the West Bengal Minister Dilip Ghosh has also stepped in, however, backing that decision, that stand that's been taken by the court, saying everyone must follow that particular dress code and that individual freedom cannot override as far as institutional rules are concerned. The verdict has now basically reignited that debate over school uniforms, religious expression and individual choices as well.
3: इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया. हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी. हिजाब पहन के कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते. मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं. क्यों? क्योंकि साबरीमाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व फॉर जजमेंट है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस को अपना जजमेंट रोकना चाहिए था.
4: जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग है वो मतलब वो जो हिजाब जो महिलाएं है महिला हिजाब पहनती है स्कूल में जो लड़कियां जाती है वो भी मतलब हिजाब पहनती है मतलब वो लगाती है. मुझे लगता है वो उनका ट्रेडिशनल मुस्लिम धर्म का वो उनका मतलब परंपरा है. लेकिन हम अपने संविधान पर चलते हैं, कानून पर चलते हैं. और जिस तरह मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बताया है कि भाई हिजाब पहनने की आवश्यकता नहीं है, हिजाब नहीं पहनना चाहिए. मुझे लगता है भाई कोर्ट का आदर करना चाहिए. जरूर मुस्लिम समाज की भावना में थोड़ी सी तेज पहुंच सकती है.
5: ड्रेस कोड जहां है आर्मी में पुलिस में दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी महिलाएं अभी जा रहे हैं वो क्या हिजाब पहन के जाती हैं. इसलिए स्कूल का ड्रेस कोड सबको मान्य है. कोई अपना घर में पहने सामाजिक अनुष्ठान में पहने अपने मर्जी का पोशाक पहन सकता है. लेकिन जहां कानून है व्यवस्था है डिसिप्लिन की बात है वहां तो उसको अलाउ नहीं किया जा सकता.
6: देखिए मैं कोई आलिम नहीं हूं लेकिन जो हालात हैं मुझे एक चीज़ सब समझ में नहीं आती. सर ढकें तो प्रॉब्लम, सर ना ढकें तो प्रॉब्लम. तो यहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है.
7: सर ढकना चाहिए, हिजाब पहनना चाहिए.
6: ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है. सर ढकना के भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है. आप उसको हिजाब नाम दे दें तो वो मुसलमान हो जाता है, लेकिन पल्लू नाम दे दें तो वो हिंदू हो जाता है. तो बात तो सर ढकने की है ना.
8: देखिए पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि हिजाब इस्लाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. ठीक है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं मुझ जैसी भी जो अपनी मर्जी से हिजाब पहने ना पहने, लेकिन संविधान ने सबको हक दिया है कि आप अपनी मर्जी से अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं और धर्म ना भी फॉलो करें. आज इतनी महिलाएं हैं जो गांव में घूंघट करती हैं, ठीक है, इतनी महिलाएं हैं जो सर पे दुपट्टा रखती हैं. और हर धर्म जाति में अपना अपना अलग कल्चर होता है. तो मुझे लगता नहीं है कि किसी का भी हक बनता है कि इन सब में आप दखलअंदाजी करें.
2: Well, let's just also switch tracks and get you the latest when it comes to Kiran Rijiju's swimming in a river in Arunachal Pradesh. Now, that has stirred a political storm here in the national capital. Well, we had Pawan Khera taking a swipe at Rijiju over the attire that was worn by him, calling him half naked, mocking him for invoking Rahul Gandhi while taking a swim, alleging that Rahul has gotten under the skin of the BJP and hitting back was Pawan Khera. In fact, Rijiju has written saying that he's a first-time nominated MP and that he really shouldn't make such indecent comments. He further took a jibe at Pawan Khera, saying that he shall report Khera to the Chief Minister of Assam, Hemanta Biswa Sarma, and also claiming that it was the Congress supporters who invoked Rahul looking at the, you know, Kiran Rijiju there swimming, and that he was only replying to those very trolls. Let's just also get you, this is in regard to switching tracks now. Let's talk about that car. This was a car, an Innova car that was being washed by, this is literally, as you can see, those three men who are at it washing the car, the Innova car. This is of a BJP MLA's car. The question really there is of that viral video from Singrauli showing a fire brigade personnel washing Ram Nivas Shah's Innova outside his government residence. A fire tender meant for emergencies appears to have taken on a rather unusual assignment, giving the MLA's SUV a wash. These visuals have triggered questions over the alleged use of resources of the government for personal work. The MLA says that he wasn't present and had no knowledge of what really was going on at his residence.
9: Vidhayak ji, in dono social media mein aap khub charche hain. Aapki gaadi dhone ka bhi mamla samne aa gaya hai. Kya kuch?
10: लोगों को ये समझना चाहिए गाड़ी कोई विधायक जी धोते हैं. अब ऐसे विषय लेकर के लोग खड़े हो रहे हैं जिनकी जमानतें नहीं बची हैं, जो पार्षद के लायक व्यक्ति नहीं है वो बात उठा रहे हैं. इनकी क्या हैसियत है? हम खुद ही नहीं समझते कि सिंगरौली में कांग्रेस बची हुई है. जब मेयर आम आदमी पार्टी की जीती तो ये चौथे स्थान पर जमानत नहीं बचा सके. पुनः नगर नियम आ रहा है तो फड़फड़ा रहे हैं और कुछ नहीं.
9: तो क्या आप मानते हैं कि ये मुद्दा जो है सिर्फ कांग्रेस उठा रही है?
10: ये मुद्दा किसी के लायक नहीं है, उनके लायक है जो लायक ही नहीं है. हमने ड्राइवर को कहा कि जल्दी से आ जाना, तो हम तो थे ही नहीं, हम क्या जाने, हम क्या कोई गाड़ी धुलाई रहे.
9: फायर ब्रिगेड की गाड़ी किसी ने बुलाया होगा यहाँ पे या कैसे खड़ी?
10: अब ये तो नगर नियम के लोग जाने. नगर नियम के टंकियों में पानी नहीं था शायद, तो शायद ऊपर में पानी नहीं जाता तो नगर नियम अध्यक्ष और महापौर के यहाँ पानी डालने आई.
2: Switching tracks now to Sohrab Mamdani, the New York mayor, who has in fact opposed that political vision of the RSS, saying that the city has no clear jurisdiction to stop a private event that's supposed to take place over the weekend at Madison Square Garden in New York City. Mamdani says that he does not really support this rally, but is unsure whether the city can go ahead and cancel the event. The event will feature RSS Chief Mohan Bhagwat, with organizers expecting about 5,000 people to show up for the 100-year celebration. This is of the RSS. The event has faced calls for cancellation from civil rights, interfaith, as well as diaspora groups, with protests that have also been held outside the city hall. Now, U.S. singer has also come out. We're talking about Mary Melvin, who has hit back at Mamdani, accusing him of opposing that very event because of his views on Prime Minister Modi and the BJP, calling on to basically saying that his supporters to host their own anti-Modi rally instead. Do remember that the RSS chief, who is on that Three Nation tour, is wanting to also dispel misconceptions about the RSS.
11: Should the rally be cancelled, though, at MSG this weekend?
12: I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event.
13: जो हिंदुस्तानी मूल के लोग बाहर रह रहे हैं, वे जब तक पूजनीय वंदनीय सरस्वती पुजारी जी को सुनते नहीं, सुने बगैर अगर अपना निष्कर्ष निकालेंगे तो ये कौन सी विचारधारा है? और आदरणीय सरस्वती चालक जी वहां जाकर के भारत का गत वैभव पुनः स्थापित हो, सनातन हिंदू धर्म के हिंदुत्व के विचार

0: बयान देते हैं। आरएसएस इतने लंबे समय से समाज सेवा के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए निरंतर, कोई भी आपदा आती है तो सारे स्वयंसेवक हमारे उसमें लोगों की मदद के लिए लगते हैं। तो एक ऐसा संगठन है जो हमेशा देश के साथ में, देश के अच्छे और संकट का समय होता है उसमें भी लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। गरीब बस्तियों में जाके जो नीडी लोग हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, हर क्षेत्र में हमारा संगठन काम करता है। तो इस तरीके के बयानबाजी देने से किसी के कुछ बदलता नहीं है। ये सत्ता में तो हम 2014 में आए हैं, लेकिन कितने लंबे समय से आरएसएस काम कर रहा है, हमारे स्वयंसेवक काम कर रहे हैं समाज सेवा के लिए, तो बोलने का कोई अधिकार किसी को नहीं है।
1: अमेरिका की बात तो वहाँ का आंतरिक मामला है, उस पर हम लोग क्या बोलेंगे। लेकिन भागवत जी स्वयं ऐसी संस्था के सदस्य हैं या प्रमुख हैं जो पंजीकृत नहीं है, वहां पंजीकृत है, यहां पंजीकृत नहीं है। उनकी गतिविधियों पे कहीं प्रश्न उठ जाते हैं। जो समाज से भी संस्था की छवि थी वो एक विवादित राजनीतिक छवि में परिवर्तित होती जा रही है। तो पहले वो काम जो करते थे वो समाज सेवा का ज्यादा माना जाता था, बाढ़ आ गया, कोई दूसरी ऐसी घटना हो गई, वहां पर स्वयंसेवक पहुंच रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। अब शुद्ध रूप से राजनीतिक हो गया है संगठन, तो सब हो सकता है इस वजह से भी बात हो रही है।
2: मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो संस्था महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड नहीं, देश में रजिस्टर्ड नहीं, वो संस्था एनजीओ बन के पूरे देश में काम कर रही है। दुनिया के 36 देशों में उनकी बैंक में अकाउंट है, पैसा कहाँ का है, क्या है, किस काम के लिए यूज़ किया जाता है, उसका कोई ऑडिट नहीं है। और इसलिए न्यूयॉर्क में हो या अमेरिका के पूरे एरिया में हो, इनको उन लोगों ने तो ऑलरेडी आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन अब मोहन भागवत जी विरोध होने के बाद भी वहाँ क्यों गए, ये एक संशोधन का हिस्सा बन चुका है।
3: We don't need lessons on exclusionary vision from someone who is extreme left, radical separatist and has sympathy for anti-national Umar Khalid. It will take ages for you to understand an institution which indulges in man-making, nation-building and also human service, service of humanity, especially in times of crisis and disaster, irrespective of caste, creed, religion or gender, which is a true idea of pluralism, while your idea of pluralism is distorted, bent towards one line of thinking and group, and also biased. I hope you understand this.
4: मायने नहीं रखता वो वहाँ के, वहाँ का विरोध वो लोग जाने, मोहन भागवत कोई मायने नहीं रखते। पैलेट गन्स किसने चलवाई उसका जवाब मोहन भागवत दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ले लेंगे जवाब।
5: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सेवा इंटरनेशनल अमेरिका में 200 से ज़्यादा चैप्टर्स चलाती है। हरिकेन हो, कोविड हो, हमेशा मौजूद। FBI ने कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला है। ज़ोरान ममदानी जो ये चलाते हैं स्टॉप हिंदू हेट, स्टार्ट हिंदू हेट, ये कैंपेन क्यों तुष्टिकरण के कर रहे हैं, जब उन्हीं के अमेरिका में खालिस्तानी रैली अलाउड है, हमास को वो सपोर्ट करते हैं, वहाँ मोहन जी भागवत का रीच आउट जो है 2 लाख हिंदू अमेरिकन्स को, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि से वो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है वसुदेव कुटुंबकम, मींस दैट द वर्ल्ड इज़ योर फैमिली। सवाल ये उठता है कि ज़ोरान ममदानी, क्या आप ये परिवार के सदस्य है या टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य?
6: Switching tracks now to Nepal, a massive flash flood has hit the Rasuwa district near Tibet and authorities are fearing heavy casualties and have urged those who are living on the riverbanks to seek higher ground. Nepal Prime Minister has in fact said that rescue and relief operations are underway, as well as police and the military have been dispatched to help as far as the aid is concerned. Now the Nepal Army helicopters have been deployed for the ongoing rescue operations and assisting the Nepal Army as far as the medical team is providing emergency medical treatment services as well. And switching tracks now to a Reuters investigation that's raised questions over the food products that are being sold here in India and how they are being labeled. Reuters has found that the same Fanta sold in India contains 3 times the amount of sugar as the version sold in London. The Indian version also contains an artificial dye that carries a prominent warning in Europe. Reuters has also reported differences when it comes to Maggi and the

0: वो कांग्रेस के टाइम की डेवलपमेंट हुई हुई आज तक हम संभाल रहे हैं। एक ही तरीका है इसको अब आज के दिन ठीक करने का कि जहां पर ही पुराने नाले थे उसको अंडरग्राउंड टनल्स बना करके, जैसे कि हम मेट्रो के लिए बनाते हैं, उस तरह के टनल बना करके इस पुराने पानी को, इस पानी को उसी पुराने रास्तों के मार्फत भेजें, तो उसके ऊपर सरकार काम कर रही है, उसके लिए पैसा हम तजवीज करवा रहे हैं।
1: क्या कह सकते हैं, राव साहब ने जो कहा, लेकिन वो भी जानते हैं और सारी दुनिया जानती है कि पिछले 12 साल से तो भाजपा की सरकार है और अभी तो केंद्र में भी है, राज्य में भी है, कॉरपोरेशन भी है, तो क्या सभी लोग 12 साल से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, किसी को कुछ मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा है? क्योंकि जबकि ये हर साल होता है, इस बार बहुत ज़्यादा गंभीर हुआ है, तो 12 साल का नतीजा आप आज देख रहे हो कि इन्होंने हाथ पे हाथ धर के बैठी रही है तीनों सरकारें, और मिलेनियम सिटी का मिजरेबल सिटी, मैंने किसी और का कोट है, ये मेरा नहीं है, मैंने खुद पढ़ा है, इस तरह की बातें हो रही हैं, इनके नाक के नीचे हो रहा है, ऊपर ऊपर देखो चमकीला चमकीली इमारतें देखो, लेकिन नीचे उतर नहीं पाओगे इस पानी में।
2: वो सरकार के टाइम में राव साहब खुद मंत्री थे, आज भी मंत्री हैं, 12 साल से तब मंत्री हैं, क्यों नहीं कराया? लेकिन ये हकीकत है कि इस 12 साल में गुड़गांव को बिल्कुल बर्बादी के कगार पर ले आई है सरकार। ना सीवरेज ना है, ना और कोई सिस्टम ठीक करते हैं, ना सफाई करते हैं, ना ड्रेनेज का काम करते हैं। आप स्वयं आप तो गुड़गांव आते जाते रहे हो, आज से 12 साल पहले कभी इतना बड़ा होगा
3: नहीं।
2: बारिश तो इससे बहुत ज़्यादा हुई है। अब इनको गुड़गांव एक ऐसी शहर बनाने का काम किया था हमने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था, तो उसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, पूरा वो करना चाहिए। बल्कि पानी के लिए एक अलग से नहर खोद दी हमने वहाँ से यमुना से, ताकि पानी की कमी ना हो। तो इनको निकासी का तो इनको करना है, क्यों नहीं, क्यों क्यों चौक पड़े हैं सीवरेज, क्या कारण है?
4: सीएम साहब और सारे के सारे मीटिंग्स लेते रहते हैं, और क्योंकि लंबा टाइम की बात है तो इसमें सारी की सारी जो इसके सॉल्यूशंस भी निकालने में टाइम लगेगा। मैं अपने विभाग के बारे में भी जैसे आपको बताऊं, इरिगेशन डिपार्टमेंट का इतना लंबे टाइम से काम नहीं हुआ है, इतना झड़झड़ हालत पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो गई है कि अब उसको एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत बहुत हद तक उसका पूरा नवीनीकरण होगा। तो ये सारी की सारी इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो विजन है और ये इस मामले में स्टॉक लिया है कि किस तरीके से पूरा की पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर हमको इरिगेशन डिपार्टमेंट को कैसे सुधारना है।
5: 12 साल से बीजेपी सरकार ने गुड़गांव को, गुरुग्राम शहर को, उन्होंने कभी वो उसे कूड़े का ढेर बनाते हैं, कभी वो गंदगी का गटर गुड़गांवा को बनाते हैं, और कभी बाढ़ का शहर बना देते हैं। 1400 करोड़ रुपया नायब सैनी जी आपने खर्च किया, बड़े बड़े दावे किए, परंतु हो क्या रहा है? स्कूल बसें फ्लड के पानी में, बारिश के पानी में बह रही हैं, बच्चे 6-6 घंटे वहां बैठे हैं, बच्चे किलकिला रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। जो हिंदुस्तान का आईटी हब है गुरुग्राम, वो हिंदुस्तान का बाढ़ हब बन गया है बारिश के पानी से।
6: मेरे को सूचना मिली, मैं इसको तो क्या स्थापित था, तो मेरे जवान ने रिपोर्ट दी कि तो जमीन धस गई है, तुरंत मौके पे आया हूँ। उस टाइम छोटा गड्ढा था और मैंने इसी बाद में तुरंत बैरिकेटिंग कर दी और अपने सीनियर अधिकारियों को फोन कर दिया और MCG और GMDO को मैंने फोन कर दिया और स्थिति को उससे मौके से संभाल लिया था। पाइपलाइन टूट गया है, वो दिख रहा है पाइपलाइन टूट गया।
7: And even as that political blame game continues, let's take a look now at the ground reality. NDTV's report from the ground. This is Gurugram's very arterial IFFCO chalk, where a massive section of the road has caved in after that heavy rain. Take a look.
8: Right now, we are present at one of the most important intersections in Gurugram, IFFCO chalk. And behind me, you can see the very road which got severely affected. in the rains in last 2 days. An important intersection of the IFFCO chalk wherein a huge section of the road was caved in suddenly yesterday after 2 days of severe rain. This particular opening, a 10-foot wide sinkhole, disrupted traffic towards towards this particular U-turn flyover. Teams from GMDA and National Highways Authority of India reached this site soon after the incident was reported. You can see the visuals, how the entire area has been completely cordoned off. As soon as the information was given to the traffic police officials and the officials and the authorities, the entire area was cordoned off. The traffic was diverted. However, the work has begun. You can see the filling of this entire pit, the entire road which has caved in. The work is in progress. Traffic police officials have been put in place. A police official has also been put in place to look after the entire filling in of this pit. However, this raises a very severe question, because back in July, when during the rainy season, we saw what happened at NH48, and now this is another case within a span of just 1 month that an entire section of the road caved in suddenly yesterday.
7: Well, moving on now to some other news, and jewelry brand Jiva has now pulled down actor Kriti Sanon's Raksha Bandhan ad. This is after major backlash over the ad's depiction of the festival and the actor's outfit. Now, the brand says it has deep respect for Indian culture and withdrew the ad out of respect after some felt it hurt sentiments. But the move comes after BJP MP Kangna Ranaut's sharp criticism of the ad and Kriti's outfit. Meanwhile, Rahul Gandhi backed Kriti, saying that what a woman wears is her choice. And now Kangana Ranaut has shared a BJP post mocking Rahul Gandhi over the patriarchy debate, though that post predates his remarks and was not a direct response to what Rahul Gandhi had said.
9: Jiske ghar khud sheeshe ke hon, dusre ke makam pe patthar nahi dal marte. Kangana Ranaut apni tasveeron ko dekh le aur किस तरह से बॉडी एक्सपोज करके जगह बनाया है, अगर कोई भी नैतिकता रह जाए होगी तो कृति सेनन से माफ़ी मांगेंगे। और दूसरी बात है, पैट्रियार्की मैट्रियार्की ये कंगना रनावत के समझ में नहीं आएगा। ये जो बुद्धि जिसके पास होती है और जो फ्रीडम को समझता है, जो पढ़ा लिखा है, उसी को समझ में आएगा। तो इसका जवाब मैं देना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि जो मानसिक स्तर है, समझदारी का स्तर है कृति कंगना रनौत का, बहुत बहुत नीचे स्तर पर है।
10: एक और उन्होंने अपने आप को देखा है, कैसी कैसी फिल्में की हैं उन्होंने, तब बताएं बातें। ऐसी बातें मत करें वो जो उनके ऊपर ही खुद लागू हो जाए। उन्होंने अपने आप को देखा है, कैसी कैसी फिल्में की हैं उन्होंने, तब बताएं बातें। ऐसी बातें मत करें वो जो उनके ऊपर ही खुद लागू हो जाए।
11: ये भाई है कंगना रनौत का तो मुझे पूछो ही मत यार, वो हर बार आके इसी तरह अनाप शनाप बकवास बातें करती है। अरे भाई, तुम्हारे अंदर झांको ना, तुम क्या हो, दूसरे की लाइफ में अंदर क्यों तुम इंटरफेयर कर रहे हो? थोड़ी सी पब्लिसिटी लेने के लिए आप रोज अनाप शनाप बकवास करते, महिलाओं के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप अपने आपकी वीडियो कितने वायरल है वो देखिए। आपकी इसी हरकतों की वजह से थप्पड़ पड़ गया था, आप वो थप्पड़ की गूंज भूल गए क्या? आप अपने आप को समझते हो झांसी की रानी? अरे आप नकली घोड़े के ऊपर बैठ के तलवार फहराने से उस ओरिजिनल झांसी की रानी नहीं बन जाएंगे। आपको पब्लिसिटी चाहिए, अच्छा काम करिए, काम करेंगे, नाम होगा तो काम नाम होगा आपका, पब्लिसिटी मिलेगा। लेकिन इस तरह से हर दिन आए दिन कुछ ना कुछ बकवासबाजी करके लाइमलाइट लेना, और वो भी तो बाबा रामदेव की उनके साथ फंस गई है, होने तो आपस में फाइट, दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा रहे, तो ये क्या, उसके बारे में बोलना सही बात नहीं है। उनको आदत है बकवास करने की, छोड़ो उसको।
12: जिस पर जो डर दबाव है वो जाने, कंपनी जवाब दे, कोई और जवाब दे, सवाल एक ही है, पैलेट गन्स का आदेश किसने दिया था?
13: राहुल गांधी की आदत बन गई है कि हर जगह दखल अंदाजी करना है। छात्रों को लेके वो ऐसे पेश करते हैं कि वो मसीहा है। जब महिलाओं का एक मुद्दा उठता है, महिला का सम्मान का, महिला का पोशाक का, वहां भी वो कूद पड़ते हैं। शायद उनको ये संस्कृति चल सकता है कि बिकिनी पहन के रक्षाबंधन मनाए, लेकिन हमारे भारत की संस्कृति सभ्यता में ये कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे।
14: मैं ये कहना चाहूंगा, कंगना रानी इतनी अच्छी

0: and I'm more than happy to get your product to all of them.
1: हर हफ्ते इंडिया के असली ग्रासरूट इनोवेटर्स दिखेंगे वंदे भारतम में. Coming soon on NDTV.

0: ये जब सैलाब आया है अपने साथ सब कुछ बहाता ले गया, यही प्रकृति है जिसकी त्रासदी अब हम सब झेलते हैं। और इस वक्त हम आपको बता सकते हैं कि इस वक्त ये अनुमान लगाना कि तबाही कितनी हुई है, कितने जान का नुकसान हुआ है, बहुत जल्दी है। हमने देखा रास्ते में काठमांडू से आते वक्त किस तरह से सेना के हेलीकॉप्टर्स लगातार उड़ान भर रहे हैं और ऊपरी इलाकों में ज्यादा तबाही मची है, ये बताया जा रहा है। तो ऊपरी इलाकों का भी वो जायजा ले रहे हैं, लेकिन इस वक्त कोई भी ये बताने की हालत में नहीं है कि इस इलाके में सैलाब की वजह से कितनी तबाही हुई है, कितनी जाने गई हैं। बड़ी खबरों को लेकर हम लगातार आपको अपडेट भेजते रहेंगे, हमारी पूरी टीम यहाँ मौके पर मौजूद है। एनडीटीवी पहला ऐसा चैनल है जो इस वक्त इस सैलाब को कवर करने के लिए स्पॉट पर पहुंच चुका है, ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सिकता देव, नेपाल।
1: And well, NDTV is the only channel on ground zero there in Nepal, giving you a closer glimpse of what is happening on ground zero. As we speak, 105 Indians are missing. India has extended a help to Nepal, with Prime Minister Modi also speaking with the Nepali Prime Minister. I want to go back to that report filed by my colleague Sikta Dio, live from Kathmandu.
0: हम इस वक्त नेपाल के नुआकोट इलाके में पहुंच चुके हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं तबाही का मंजर। एनडीटीवी पहली टीम है जो लोकेशन पर इस वक्त पहुंची है और आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रही है। यही वो सैलाब है जो आज सुबह इस इलाके में आया। बताया जाता है कि यहाँ पर बाग थे, आम और लीची के पेड़ लगे हुए थे और साथ ही वहां पर जो आपको ये बिल्डिंग, जो इमारतें दिख रही हैं, वो सरकारी इमारतें थी। पहले ये जेल हुआ करता था। उस तरफ जो बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं वहां पर वो बिजली घर था। और जब ये सैलाब आया है, जब फ्लैश फ्लड आया है, तो सबको साथ लेता हुआ ये आगे बढ़ा है। हम जिस घर में खड़े हैं इसकी जो निचली मंजिल है, यहां पर भी गाद आई, यहां भी मलबा आया और पूरा अपनी चपेट में से लेता हुआ आगे बढ़ा है। कुछ तस्वीरें और दिखाएंगे, देखिए किस तरह से एक बाइक वहां पर मलबे में दबी हुई है और पूरा इलाका इस वक्त उस तबाही का गवाह बन रहा है जो आज सुबह इस इलाके में हुआ है। हमारे साथ कुछ स्थानीय भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस असर को इन्होंने देखा है, झेला है। इनके घर में भी ये मलबा घुसा। आप यहाँ निचली मंजिल में रहती हैं, क्या हुआ था सुबह?
2: सुबह तो मैं वहाँ बर्तन मांजने के लिए बैठा था, ये पानी उधर से यहाँ पर आना, मेरा पति अंदर था, मैंने लेकर वहाँ कूदा, भाग गया हम, नहीं तो हम दोनों को लेकर भगा के लेकर जाएगा। आज सुबह 9 बजे, 9:30 बजे स्कूल गया था, ये भी इसका साथ।
0: तो जो हुआ आपने खुद आंखों से देखा, पहला कभी ऐसी मंजर, ऐसी हालत आपने नहीं देखी थी?
2: देखा, फर्स्ट टाइम देखा है हमने। ये पानी तो इधर से ऐसे आया है, उधर आन के यहाँ पर देखा था, हम अंदर था। सुबह
0: तो इतना वक्त था कि आप भाग पाए और अपनी जान बचा पाए, इतना वक्त था?
2: अंदर था मेरा पति, पति को लेकर भागा मैंने, नहीं तो आज दोनों भगा के लेकर।
0: तो आपने सब कुछ बहते हुए देखा, वो चट्टान देख रहे हैं, इतनी बड़ा बोल्डर एक आया है वहां पर बहता हुआ, ये सब ऊपर से बहता हुआ आया। तो
2: ये पत्थर है ना, ये पत्थर वहाँ ऊपर था, सब भगा कर लेकर यहाँ नीचे आए। एक बंगला तो कुछ नहीं है, ये सब भगा कर लेकर गया।
0: तो जब आपने वो नजारा देखा, डरा देने वाला होगा, घबराहट हो रही थी, वो जरूर होगी।
2: सुबह से आज तक नहीं दिखा है, फर्स्ट टाइम देखा है मैम।
0: तो आप इस नीचे वाली मंजिल में रहती हैं, वहाँ पर सब मलबा गाद घुस चुका है, कुछ नहीं बचा घर का?
2: हाँ, एक कपड़े, एक कुछ नहीं है, कुछ नहीं निकल पाया है मैम ने, सिर्फ एक एक कपड़ा पहने कपड़ा है सिर्फ।
0: तो जिस कपड़े में आप थी और जिस कपड़ों में आप यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए भागी हैं, वही आप बचा पाई और सब कुछ तबाह हो गया आपके घर में?
2: तबाह हो गया, कुछ नहीं है हमारे पास, न पैसे न खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं सुबह से कुछ नहीं खाया है मैम, एक बोतल पानी तक नहीं खाया है, पानी का वो धारा देखे ये सब डूब गया, कहाँ से खाएंगे।
0: और पूरे इलाके में यही हाल है, सारे घरों में इसी तरह से तबाही मची हुई है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह इन तक राहत पहुंचे। तो ये देख सकते हैं कैसे ये जब सैलाब आया है अपने साथ सब कुछ बहाता ले गया, यही प्रकृति है जिसकी त्रासदी अब हम सब झेलते हैं। और इस वक्त हम आपको बता सकते हैं कि इस वक्त ये अनुमान लगाना कि तबाही कितनी हुई है, कितने जान का नुकसान हुआ है।

0: Welcome back to Watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal. And shifting our focus to other stories, jewelry brand Riva has now pulled down Kriti Sanon's Raksha Bandhan ad. This after, of course, a major backlash over the ad's depiction of the festival. Well, the brand says it has deep respect for Indian culture and withdrew the ad out of respect after some felt that it hurt the sentiments. The move comes amid BJP MP Kangna Ranaut's sharp criticism of the ad and Kriti's outfit. Meanwhile, Rahul Gandhi backed Kriti, saying what a woman wears is her choice. And now, Kangna has shared a BJP post mocking Rahul over the patriarchy debate. Though the post predates his remarks and was not a direct response to him.
1: उन्होंने अपने आप को देखा है कैसी कैसी फिल्में की हैं उन्होंने तब बताएं बातें ऐसी बातें मत करें वो जो उनके ऊपर ही खुद लागू हो जाए उन्होंने अपने आप को देखा है कैसी कैसी फिल्में की हैं उन्होंने तब बताएं बातें ऐसी बातें मत करें वो जो उनके ऊपर ही खुद लागू हो जाए
2: इस पर जो डर दबाव है वो जाने कंपनी जवाब दे कोई और जवाब दे सवाल एक ही है पैलेट गन्स का आदेश किसने दिया था
3: राहुल गांधी की आदत बन गई है कि हर जगह दखल अंदाजी करना है छात्रों को लेके वो ऐसे पेश करते हैं कि वो मसीहा है जब महिलाओं का एक मुद्दा उठता है महिला का सम्मान का महिला का पोशाक का वहां भी वो कूद पड़ते हैं शायद उनको ये संस्कृति चल सकता है कि बिकिनी पहन के रक्षाबंधन मनाए लेकिन हमारे भारत की संस्कृति सभ्यता में ये कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे
0: On that note, we're slipping into a very short break. Come right back. We continue to track all that's happening in Nepal with NDTV, the only team on Ground Zero.

0: Welcome back. You're watching Nationwide at 6 with me, Raisha Sehgal. We have some breaking news coming in from Nepal. Initial information suggests that the earthquake triggered the floods National Center for Seismology. The flood disaster was preceded by an earthquake in Tibet of intensity 4.9 on Richter scale. 477 people are missing in Rasvu flood. They include 79 security personnel, 14 customs officials and 384 domestic and foreign tourists. Also 105 Indians missing after the disaster. But what we are bringing to you right now is that initial information suggesting that what we're witnessing in Nepal right now, the flash floods, the mudslides, it suggests that an earthquake preceded the floods. So the earthquake triggered the floods. That's what the National Center for Seismology has said. It was a 4.9 magnitude earthquake that preceded the flash floods and the mudslides there in Nepal. The earthquake occurred in Tibet of intensity 4.9 on Richter scale. But as we speak, there's been huge infrastructure loss. Key infrastructure have been submerged and people have been missing. There are 477 people who are missing in Rasvo flood. But remember, NDTV is the only channel on ground. NDTV with its team of anchors and reporters are on ground zero there in Nepal. And my colleague Sikta Dio has sent us this ground report from Kathmandu, giving you a closer glimpse of the aftermath of the mudslides and the flash floods in Nepal.
1: So NDTV has reached the ground zero. We are at a Nuwakot area of Nepal where the flash floods have hit and damaged and destructed this entire area. You can see a section of people who have taken some rescue on top of some buildings there. Since morning, they have been waiting for relief and rescue personnel to reach them. A few of them we spoke to said they haven't had a sip of water since morning. A massive destruction. You can see the vehicles here submerged totally in destruction which has come with the flash floods which has hit this area. We have few locals here who would like to get a sense of what happened in the morning when the flash floods hit this area. Aap kahan rehte hain aur ghar kahan hai aapka? Kya hua subah, kya dekha aapne?
2: Jab ye upar se jab aaya tha, bahut speed se aaya tha, jo pani ka da hai, bahut speed se aaya tha. Jab hum log lagbhag 10 minute ka farak mein ekdam upar bhag gaye hum log. Bahut speed se aaya tha idhar. जब आदमी ऊपर से आया आया भागो भागो बोला तब हम लोग सब इधर से भाग गए. है दो चार आदमी फंसा हुआ शायद मर गया होगा, वो लोग लेकर गया होगा. हम लोग प्राय आदमी सब भाग गया.
1: पर ये अंदाजा है कि कितने लोग फंसे भी हो सकते हैं?
2: अंदाजा नहीं है, अंदाजा नहीं.
1: तो जिसको जब जो बन पड़ा उस तरफ वो भागा अपनी जान बचाने के लिए.
2: जान बचाने के लिए भाग गया.
1: आपका घर कौन सा आप दिखा सकते हैं ताकि हमारे?
2: घर नहीं है, घर लेकर गया.
1: कहाँ पे है, किस तरफ था घर?
2: जो ये घर का लास्ट में है ना, इस साइड का लेफ्ट साइड का घर का लास्ट में था, वो लेकर गया है. घर ही नहीं है,
1: घर पूरा तबाह हो गया. सब मिट्टी के नीचे है,
2: सब चला गया.
1: हम देख सकते हैं कुछ रेस्क्यू के लिए सरकार से जुड़े लोग भी यहाँ आए हुए हैं. किस तरह की मदद आपको मिल रही है?
2: अब वो ये तो सरकार वाला देखना चाहिए ना, करना चाहिए तो देखना चाहिए ना.
1: तो आप लोग फिर अभी दिन भर यहीं बाहर गुजारा है?
2: सब एक सब भागे, सब एक ही कपड़े में. कुछ कुछ सामान निकाल नहीं पाए हम लोग, सब एक ही कपड़े में भागा हुआ है.
1: पर जो आज हुआ पहले कभी देखा था?
2: नहीं नहीं नहीं देखा,
1: कभी नहीं हुआ इस इलाके में.
2: नहीं नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ.
1: तो कुछ डिस्क्राइब करेंगे क्या हुआ, क्या देखा था आपने?
3: दिस हैपेंड आफ्टर मे बी इट हैज हैपेंड बिफोर 2016 नेपाली संवत एंड इट हैज हैपेंड दिस.
1: आर यू अ लोकल
3: हियर? या आई एम लोकल. माय हाउस हैज बीन रेन बाय दिस फ्लड.
1: सो व्हाट हैपेंड इन द मॉर्निंग व्हेन यू वर इन योर हाउस?
3: आई एम अ टीचर, आई हैव गॉन टू माय स्कूल

0: टाइम की डेवलपमेंट हुई हुई आज तक हम संभाल रहे हैं।
1: मैंने ये सुझाव दिया है आज मुख्यमंत्री जी का कि इतना तो पैसा आप तजवीज़ कर दो कि एक जगह जहां पर रोक हो रही है।

0: बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: हाउ?
1: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
2: इट्स द माही वे।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: फूड इज म्यूजिक, सिंक्रनी ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स। आई एम अ कंडक्टर ऑफ केओस। शेफ गागर आनंद एट एनडीटीवी वॉक द टॉक।
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: फूड इज म्यूजिक, सिंक्रनी ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स। आई एम अ कंडक्टर ऑफ केओस। शेफ गागर आनंद एट एनडीटीवी वॉक द टॉक।
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा प्योर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: फूड इज म्यूजिक, सिंक्रनी ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स। आई एम अ कंडक्टर ऑफ केओस। शेफ गागर आनंद एट एनडीटीवी वॉक द टॉक।
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way. थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।
5: सबका राजा प्योर मसाला।
0: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से
3: देश का टायर जेके टायर।
4: ऑक्टो रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है
5: कुछ इससे भी अनोखा
4: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।
6: फूड इज म्यूजिक सिंक्रनी ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स। आई एम अ कंडक्टर ऑफ केओस। शेफ गागर आनंद एट एनडीटीवी वॉक द टॉक।
7: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा, सबका राजा आर्थर मसाला।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
4: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से
3: देश का टायर जेके टायर।
4: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।
5: फूड इज म्यूजिक, सिंक्रनी ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स। आई एम अ कंडक्टर ऑफ केओस। शेफ जागर आनंद एट एनडीटीवी वॉक द टॉक।
6: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: लगता है कि श्रीकांत शिंदे की पॉसिबिलिटीज मुझे लग रही है कैबिनेट बनने की,
1: और जो अभी
0: जयंत चौधरी मुझे लगता है
1: कि शिवसेना से तो एक एमओएस भी मिलेगी ना उनको,
0: एमओएस ऑलरेडी है उनके पास एक,
1: पर जो नए वाले आए हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा
0: नहीं, मुझे नहीं लगता कि
1: अभी
0: इनको, नहीं मुझे नहीं लगता, अगर वहां से होगा तो श्रीकांत शिंदे को बनाने का चल रहा है, एकनाथ शिंदे चाहते कि उनके बेटे को मंत्री बनाया जाए तो निश्चित रूप से श्रीकांत शिंदे का नाम जाएगा।
1: एनसीपी से,
0: और एनसीपी से मुझे संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है, प्रफुल्ल पटेल जरूर कोशिश कर रहे होंगे लेकिन सुनीता पवार प्रफुल्ल पटेल के नाम पर तैयार नहीं होगी, तो प्रफुल्ल पटेल की पॉसिबिलिटी मुझे कम नजर आ रही है, उनके बेटे को प्रधानमंत्री तैयार होंगे नहीं बनाने के लिए, अभी राज्यसभा वो गए हैं तो वो भी बनेंगे, तो मुझे संभावना कम लगती है कि किसी को एनसीपी अजीत पवार के से कोई मंत्री बनेगा, एकनाथ शिंदे के
1: जरूर बनेंगे, एनसीपी जो एनसीपी सुले, आए हैं
0: सुप्रिया सुले का देखना पड़ेगा कि सुप्रिया सुले अगर शरद पवार आते हैं अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सपोर्ट करते हैं परिसीमन बिल के लिए की बात होती है तो सुप्रिया सुले कैबिनेट मंत्री बन सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी लग रही है।
1: फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेगा?
0: निर्मला सीतारमण रहेगी,
1: निर्मला सीतारमण रहेगी
0: अभी रहेगी।
1: एजुकेशन मिनिस्टर,
0: एजुकेशन किसी को फुल फ्लेज मंत्रालय देंगे, अब क्या प्रहलाद जोशी कंटिन्यू करेंगे और उनसे जो उनके पास जो दूसरा मिनिस्ट्री वो विड्रॉ कर लेंगे ये देखने वाली बात होगी, या कोई नया मिनिस्टर लेकर आते
1: हैं। ओके, लेट्स आस्क राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव, व्हाट आर यू हियरिंग, इज प्रहलाद जोशी गोइंग टू कंटिन्यू, बिकॉज दिस रियली इज द क्राउन ऑफ थॉर्न्स, टू मिनिस्ट्रीज व्हिच आर द क्राउन ऑफ थॉर्न्स, वन इज द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड द अदर इज द एजुकेशन मिनिस्ट्री, व्हाट आर यू हियरिंग?
2: यू सी, एट द टाइम व्हेन द सीजेपी प्रोटेस्ट वर ऑन एंड मिस्टर वांगचुक was dealing with Mr. J.P. Nadda, and Nadda did very well at that time as an interlocutor, and we could see those pictures in which J.P. Nadda was handing over the glass of juice or whatever that Mr. Wangchuk took to break his fast. At that time, there was a bit of a speculation that J.P. Nadda comes from the AVBP, has the student youth background, has been part of the party structure, has been the party president, is known to be middle path. He's supposed to be a good backroom negotiator. I have seen him over the last several years. Instead of holding big rallies, he's the man who meets specific target groups and holds meetings with them and convinces them that why they should choose the BJP. At that time, there was a talk that Mr. JP Nadda could well be, but I think the field is open. I don't think somebody very new is likely to come in there because it's a very tough place to operate because there are multiple lobbies operating in education. There are deep vested interests. And I think the rot is too deep. The system is too broken that somebody who is very new can be brought in. But yes, okay. I don't think Prahlad Joshi is going to continue as the education minister.
1: Okay.
2: When it comes to what exactly is going to be the nature of the educator, who's going to be? I have been told by two very senior leaders that it is going to be somebody who has a certain proximity to the RSS also. But one will have to wait and see what.
1: All right, so you've dropped a broad hint over there. And frankly, I was a little scared when you mentioned Sonam Wangchuk, because remember, in the middle of the agitation, Arvind Kejriwal said that Sonam Wangchuk should be made the education minister of India. I was wondering if you're going in that direction. But for the time being, we're not doing any guesswork. We've given you some big, big hints here from Akhilesh Sharma, Rahul Srivastav and Sameer Chaugankar, always on top of the story when it really matters. Thank you very much for joining us here on NDTV.
3: Capital. Innovation. Leadership. The three forces shaping India's next business powerhouse. From scaling capital to unlocking the power of AI. From bold ideas to transformational leadership, Mumbai brings together the people building India Inc.'s future. Join policymakers, industry titans, visionary founders at the NDTV Emerging Business Conclave, Mumbai Chapter.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
2: रियली
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way. थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
7: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी।

0: न्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से
3: देश का टायर जेके टायर। ऑक्टो रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है।
4: कुछ इससे भी अनोखा
3: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।
5: फूड इज म्यूजिक सिंक्रनी ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स। आई एम अ कंडक्टर ऑफ केओस। शेफ जागर आनंद एट एनडीटीवी

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा प्योर मसाला।
0: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे।
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
2: कैपिटल इनोवेशन लीडरशिप The three forces shaping India's next business powerhouse. From scaling capital to unlocking the power of AI. From bold ideas to transformational leadership. Mumbai brings together the people building India Inc.'s future. Join policymakers, industry titans, visionary founders at the NDTV Emerging Business Conclave, Mumbai Chapter.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्थर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
6: देश का टायर जेके टायर।
7: फूड इज म्यूजिक, सिंक्रनी ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स। आई एम अ कंडक्टर ऑफ केओस। शेफ जागर आनंद एट एनडीटीवी वॉक द टॉक।
8: A world of questions, ideas that challenge the ordinary, conversations that connect countries and cultures, where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha, ideas across borders, the Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal. He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else.

0: levels of engagement. Ambitions cross.
1: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे
2: बोझे पेंट्स रंग बना

0: 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right and Center.
0: Hard facts.
2: War-struck country.
0: Hard questions.
2: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
3: In the Kargil area.
4: North Ukraine.
5: In France. In Italy.
6: At Srinagar.
7: I am Iskandar.
8: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV. A new Nepal. New possibilities. A new opportunity for regional cooperation. NDTV World brings together the voices defining the next chapter of India-Nepal relations. Nepal's Foreign Minister, Shishir Khanna, Finance Minister, Dr. Swarnim Wagle, Dr. Shashi Tharoor, Actor Manisha Koirala, and Dr. Ram Madhav. Diplomacy, Commerce, Security, Infrastructure, Tourism, Soft Power, NDTV Anviksha, Ideas Across Borders, The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal.
9: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking Ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
10: Launch control, 0 to 100.
11: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
12: This car makes no sense, yet it makes every sense.
13: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
11: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
0: A second changes everything. A minute moves a nation. An hour becomes history for three decades.
14: Hello and welcome. You're watching Newsnight with me, Raisha Sehgal. On the show today, we track the stories that matter. NDTV is the only team on ground zero, giving you a closer glimpse of the Nepal flood fury. We'll be tracking that with our reporters and anchors live from Kathmandu. Also, the story that matters to every consumer, same brands but different recipes. What are they hiding from Indian consumers? Lots more lined up, but first the headlines. Devastating flash flood in Nepal, over 90 killed, entire villages submerged, bridges snap and vehicles swept away. Prime Minister Modi dials Balin Shah, assures all help from India. Jeeva takes down Kriti Sanon's Rakhi ad amid huge backlash after Kangna's attack. Brand says hurting sentiments was not the intent. Karnataka Minister Nagendra's future hangs in balance. Sources tell NDTV he's set to quit as Mantri amid Valmiki scam heat. Nagendra downplays exit reports. All eyes on Congress leadership's decision. In swimming video spat, Union Minister Kiran Rijiju takes Rajya Sabha prize dig at Pawan Khera, drags in Rahul Gandhi, accuses Khera of making false allegations against Himanta and wife at Gandhi's behest. Zoran Mamdani opposes RSS chief Mohan Bhagwat's event in New York, says the law prevents the city from stopping a private event at Madison Square Garden. Gets slammed by singer Mary Melvin. And while Nepal is battling devastating floods with raging rivers sweeping away homes, infrastructure and livelihoods, scores are feared dead and many remain missing, including Indians, as rescue teams search through the night. A massive rescue operation is underway as we speak, with the army and security forces evacuating stranded people by helicopter. Teams are also searching for those who are still missing. Prime Minister Balan Shah says that saving lives is the government's top priority as we speak. Security forces have rescued more than 250 people as the search for the missing continues. India has also stepped in with support, sending 10 tons of assistance, essential medicines and earth-moving equipment to Nepal under, of course, its neighbourhood first policy. New Delhi says it stands ready to provide all possible help to Nepal. And well, NDTV is the only channel on Ground Zero. My colleague Sikta Deo has sent us multiple reports from Nepal. Take a look.
1: हम इस वक्त नेपाल के नुआकोट जिले में मौजूद हैं और हम रुके थे क्योंकि तेज बारिश हो रही थी और हम यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार कर रहे थे कि हम जब ग्राउंड जीरो में मौजूद हैं तो कुछ और रिपोर्ट्स हम आप तक पहुँचाए. तो इस बीच हमें मिले हैं सौरभ और सलीना जो यहाँ पर हमारे साथ रुके हुए थे और हम जब इनसे बात की तो हमें पता चला कि सौरभ और सलीना दो शख्स हैं जो आज इस इलाके में आए सैलाब के पीड़ित परिवारों में से हैं. इन्होंने अपनों को खोया है नदी के उस पार, त्रिशूली नदी के उस पार. परिवार के बाकी लोग फंसे हुए हैं, ये दोनों इस तरफ फंसे हुए हैं. इनके आंखों के सामने सैलाब में इनका घर बह गया, इनकी दुकानें बह गई. करीना कह रही थी जो कपड़े इन्होंने पहने हुए यही है इनके पास अब, और घर में अगर वो लौटेंगी भी कल सुबह वो कोशिश भी करेंगी वापस परिवार के पास जाने के लिए, तो वहां पर कुछ नहीं बचा है. सौरभ, हमारी संवेदनाएं आप लोगों के साथ और बहुत दुख की घड़ी है हर परिवार के लिए इस इलाके के. ऐसा सैलाब, ऐसा फ्लैश फ्लड इस इलाके ने पहले नेपाल में कभी नहीं देखा. आप लोग क्या कर रहे थे सुबह, और आप लोग खुश नसीब है कि आप लोग बच निकले. क्या देखा था आपने जब सुबह जब वो सैलाब आया?
2: उस समय तो मैं सो रहा था तो भाई ने फोन करके बोला कि बाढ़ आने वाला है, ऊपर से थोड़ा खबर आया है, तो तुरंत ही मैं बाहर निकला. वही टाइम पे पुलिस मैकिंग करते हुए आया कि बाढ़ आने वाला है, सब लोग सतर्क रहो. तो हम जा ही रहे थे कि फैमिली के पास जा ही रहे थे तो नया पुल अभी बना हुआ है, वहाँ पे पहुंचे तो तुरंत ही बाढ़ आ गया. वो आगे वाला जो हम लोग न्यू पुल से पुराना वाला पुल था वो बाढ़ ने मार के तुरंत उड़ा दिया. तो वही देखते हम लोग भागे, हम लोग भागते सही पुल पे कई लोग खड़ा थे, उन लोगों को बाहर ले गया.
1: आंखों के सामने आपने आपने तस्वीरें भी रिकॉर्ड की हैं?
2: रिकॉर्ड किया हूँ लेकिन वो सब नहीं रिकॉर्ड कर पाया भागने के चक्कर में. ये
1: तस्वीरें सौरभ दिखा रहे हैं जो उनके फोन में है. ऐसा सैलाब आंखों के सामने लोगों को बहाता चला गया, गाँव के गाँव मलबे और गाद में अंदर डूबते चले गए, और इस तरह से तबाही इस पूरे इलाके में आज सुबह मची है. लीना, ऐसा कुछ नहीं आपने अभी तक देखा होगा इस इलाके में?
3: पहली बार
1: आपने देखा. आप क्या रिएक्शन था आपका जब आपने सुना, जैसे आपके आप सौरभ बता रहे हैं कि अनाउंसमेंट हो रहा था कि सैलाब आने वाला है, ऊपर से बाढ़ का पानी आ रहा है, लगा कि हमको सबसे पहले बच के निकलना है, भाग निकलना है. कैसे आप लोगों ने क्या बाइक में भागे, पैदल भागे, क्या किया तब आपने जब ये अनाउंसमेंट सुना?
3: डर लाग्यो कि बाँच्दिनँ होला जस्तो लागेको थियो. अनि मेरो पछि पछि आयो बाढी चाहिँ.
1: भाग भाग के आप लोग?
3: मेरो पछि पछि था बाढी.
1: बाढ का पानी आपके पीछे पीछे था और आप आगे आगे भाग रहे थे?
2: थोड़ी सी देर होता था हम लोग को बाहर ले जाता. हम लोग के पीछे बड़ी मम्मी और मेरा बड़ी मम्मी का लड़का था, वो बाहर ले गए.
1: सब भाग रहे थे?
2: हाँ, सब भाग रहे थे. हम लोग के पीछे एक दो तीन लगभग चार आदमी बाहर ले गए.
3: हमारे पीछे जितने भी लोग थे सबको भगा
2: ले. ज्यादातर आदमी ऊपर चढ़ गए इसलिए थोड़ा से
1: डर. वैसे में जब आपके पीछे पीछे पानी था आप लोग भाग रहे थे, कभी ऐसा लगा कि क्या होगा अगर पानी हमारे तक आ जाए? तो वो डर भी हो रहा होगा, जरूर रहा होगा. और आप लोग खुश नसीब लोगों में हैं जो अपनी जान बचाने में कामयाब हुए हैं, और ऐसे कई लोग इस इलाके के लापता भी बताए जा रहे हैं. अभी तो इतनी तेज बारिश हो रही है कि अभी रेस्क्यू का भी काम रुका हुआ है, और बारिश हो रही है तो हेलीकॉप्टर भी ऊपर नहीं जा पा रहे. वहां पर कुछ जानकारी, अपने परिवार से बात हो पा रही है?
2: परिवार से कॉन्टेक्ट हुआ है, उन लोग तो अभी सेफ है तो अभी, लेकिन अभी
1: फोन मिला पाए।

0: लक्ष्मी योजना हर महीने लेकर आई है 2500 रुपए की सौगात। दिल्ली लखपति बिटिया योजना के जरिए रेखा गुप्ता सरकार स्नातक तक शिक्षा के लिए बेटियों को दे रही जबरदस्त आर्थिक सौगात।
1: कोई भी योजना है, चाहे वो दिल्ली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लखपति बिटिया योजना हो या विद्यावाहिनी हो, वो हर एक योजना दिल्ली की बेटी को, दिल्ली की बहनों को बल देने वाली है।
0: रेखा गुप्ता सरकार की सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड योजना ने महिलाओं को दी फ्री बस सेवा की सौगात। विद्यावाहिनी योजना से 1,40,000 बेटियों को साइकिल की सौगात। दिल्ली की बेटियों के सपनों को रेखा गुप्ता सरकार ने दी नई रफ्तार।
2: देखिए, what's happening at the National Archery Championship?
3: The girls under 16 final is underway.
2: Navigate me to the National Archery Club.
4: Live Gen AI in the Kia Sorento. Thoughtful intelligence for the moments that matter.
5: Kia. Movement that inspires.
6: सबके लिए पकौड़े लगा
7: दो। खूबी बारिश के बिना
6: राजधानी जैसा।
8: A second changes everything. A minute moves a nation. An hour becomes history. For three decades.

0: अपने अपनों को खोया है नदी के उस पार, त्रिशूली नदी के उस पार परिवार के बाकी लोग फंसे हुए हैं। ये दोनों इस तरफ फंसे हुए हैं, इनके आंखों के सामने सैलाब में इनका घर बह गया, इनकी दुकानें बह गई। करीना कह रही थी जो कपड़े इन्होंने पहने हुए यही है इनके पास अब, और घर में अगर वो लौटेंगी भी कल सुबह, वो कोशिश भी करेंगी वापस परिवार के पास जाने के लिए, तो वहां पर कुछ नहीं बचा है। सौरभ, हमारी संवेदनाएं आप लोगों के साथ, और बहुत दुख की घड़ी है हर परिवार के लिए इस इलाके के। ऐसा सैलाब, ऐसा फ्लैश फ्लड इस इलाके ने पहले नेपाल में कभी नहीं देखा। आप लोग क्या कर रहे थे सुबह, और आप लोग खुश नसीब है कि आप लोग बच निकले, क्या देखा था आपने जब सुबह जब वो सैलाब आया?
1: उस समय तो मैं सो रहा था, तो भाई ने फोन करके बोला कि बाढ़ आने वाला है, ऊपर से थोड़ा खबर आया है, तो तुरंत ही मैं बाहर निकला। वही टाइम पे पुलिस मैकिंग करते हुए आया कि बाढ़ आने वाला है, सब लोग सतर्क रहो। तो हम जा ही रहे थे कि फैमिली के पास जा ही रहे थे, तो नया पुल अभी बना हुआ है, वहाँ पे पहुंचे तो तुरंत ही बाढ़ आ गया। वो आगे वाला जो हम लोग न्यू पुल से पुराना वाला पुल था, वो बाढ़ ने मार के तुरंत उड़ा दिया। तो वही देखते हैं, हम लोग भागे, हम लोग भागते सही पुल पे कई लोग खड़ा थे, उन लोगों को बाहर ले गया।
0: आंखों के सामने आपने आपने तस्वीरें भी रिकॉर्ड की हैं?
1: रिकॉर्ड किया हूँ, लेकिन वो सब नहीं रिकॉर्ड कर पाया भागने के चक्कर में। ये
0: तस्वीरें सौरभ दिखा रहे हैं जो उनके फोन में है। ऐसा सैलाब आंखों के सामने लोगों को बहाता चला गया, गाँव के गाँव मलबे और गाद में अंदर डूबते चले गए, और इस तरह से तबाही इस पूरे इलाके में आज सुबह मची है। लीना, ऐसा कुछ नहीं आपने अभी तक देखा होगा इस इलाके में?
2: पहली बार
0: आपने देखा? आप क्या रिएक्शन था आपका जब आपने सुना, जैसे आपके आप सौरभ बता रहे हैं कि अनाउंसमेंट हो रहा था कि सैलाब आने वाला है, ऊपर से बाढ़ का पानी आ रहा है, लगा कि हमको सबसे पहले बच के निकलना है, भाग निकलना है, कैसे आप लोगों ने क्या बाइक में भागे, पैदल भागे, क्या किया तब आपने जब ये अनाउंसमेंट सुना?
2: डर लगा कि अब बाँच दिन होला जस्तो लागेको थियो, अनि मेरो पछि पछि आयो बाढी चाहिँ।
0: भाग भाग के आप लोग?
2: मेरो पछि पछि था बाढी,
0: बाढ का पानी आपके पीछे पीछे था, आप आगे आगे भाग रहे थे।
1: थोड़ी सी देर होता था हम लोग को बाहर ले जाता, हम लोग के पीछे बड़ी मम्मी और मेरा बड़ी मम्मी का लड़का था, वो बाहर ले गए,
0: सब भाग रहे थे।
1: हाँ, सब भाग रहे थे, हम लोग के पीछे एक दो तीन लगभग चार आदमी बाहर ले गए,
2: हमारे पीछे जितने भी लोग थे सबको भगा
1: ले। ज्यादातर आदमी ऊपर चढ़ गए, इसलिए थोड़ा से
0: वैसे में जब आपके पीछे पीछे पानी था, आप लोग भाग रहे थे, अभी ऐसा लगा कि क्या होगा अगर पानी हमारे तक आ जाए, तो वो डर भी हो रहा होगा, जरूर रहा होगा। और आप लोग खुश नसीब लोगों में हैं जो अपनी जान बचाने में कामयाब हुए हैं, और ऐसे कई लोग इस इलाके के लापता भी बताए जा रहे हैं। अभी तो इतनी तेज बारिश हो रही है कि अभी रेस्क्यू का भी काम रुका हुआ है, और बारिश हो रही है तो हेलीकॉप्टर भी ऊपर नहीं जा पा रहे। वहां पर कुछ जानकारी अपने परिवार से बात हो पा रही है?
1: परिवार से कॉन्टेक्ट हुआ है, उन लोग अभी सेफ है, तभी लेकिन अभी
0: भी फोन मिला पाए अपने माता पिता से बात कर पाए?
1: अभी तो नहीं लग रहा है, अभी
0: नहीं लग रहा,
1: अभी कांटेक्ट नहीं है, नेटवर्क नहीं है।
0: अब हिम्मत करनी होगी, कल एक नई सुबह है और अपनों के पास आप लोगों को पहुंचना है, और ये कोशिश कल आप लोग करेंगे जैसे कि आप लोग बता रहे हैं।
1: सबसे पहले फैमिली के पास पहुंच जाएगा, उसके बाद फिर न्यू स्टार्टअप, जीरो से उठ के आएगा तो जीरो में ही स्टार्ट किया जाएगा। अभी इधर से देखा जाए कुछ मदर उदर होता है,
0: आप दोनों के हौसले को सलाम, और उम्मीद करते हैं कि आपका परिवार जो इस वक्त उस पार फंसा हुआ है वो सलामत है, और आप लोग कल जल्द से जल्द मिलेंगे। यही शुभकामनाएं आप दोनों के लिए, सौरभ करीना, शुक्रिया।
3: Well, NDTV will continue to track all that's coming out from Nepal. We are the only channel on Ground Zero. But for now, shifting our focus to another story that matters to every consumer. A Reuters investigation is putting the spotlight on what Indians are getting in packaged foods compared with consumers in other countries. The report highlights differences in the recipes of the same global brands and the battle over front-of-pack nutritional warnings in India. A can of Fanta sold in London has 63 calories.

0: पहली बार
1: आपने कहा आप, क्या रिएक्शन था आपका जब आपने सुना, जैसे आपके आप सौरभ बता रहे हैं कि अनाउंसमेंट हो रहा था कि सैलाब आने वाला है या ऊपर से बाढ़ का पानी आ रहा है, फिर लगा कि हमको सबसे पहले बच के निकलना है, भाग निकलना है, कैसे आप लोगों ने क्या बाइक में भागे, पैदल भागे, क्या किया तब आपने जब ये अनाउंसमेंट सुना?
0: नहीं
1: जा रहे नेपाल
0: मेरो पछि पछि आयो बाढी चाहिँ
1: भाग भाग के आप लोग
0: मेरे पीछे पीछे था बाढी
1: बाढ़ का पानी आपके पीछे पीछे था और आप आगे आगे भाग रहे थे
2: थोड़ी सी देर होता था हम लोग को बाहर ले जाता है हम लोग के पीछे बड़ी मम्मी और मेरा बड़ी मम्मी का लड़का था वो बाहर ले
1: सब भाग रहे थे
2: सब भाग रहे थे हम लोग के पीछे एक दो तीन लगभग चार आदमी बाहर
0: हमारे पीछे जितने भी लोग थे सबको भगा
2: और ज्यादातर आदमी ऊपर चढ़ गए इसलिए थोड़ा से
1: वैसे में जब आपके पीछे पीछे पानी था आप लोग भाग रहे थे अभी ऐसा लगा कि क्या होगा अगर पानी हमारे तक आ जाए तो वो डर भी हो रहा होगा जरूर रहा होगा और आप लोगों खुश नसीब लोगों में है जो अपनी जान बचाने में कामयाब हुए हैं और ऐसे कई लोग इस इलाके के लापता भी बताए जा रहे हैं अभी तो इतनी तेज बारिश हो रही है कि अभी रेस्क्यू का भी काम रुका हुआ है और बारिश हो रही है तो हेलीकॉप्टर भी ऊपर नहीं जा पा रहे वहां पर कुछ जानकारी अपने परिवार से बात हो पा रही है
2: परिवार से कॉन्टेक्ट हुआ है उन लोग अभी सेफ है तभी लेकिन अभी
1: फोन में ला पाए अपने माता पिता से बात कर पाए
2: अभी तो नहीं लग रहा है अभी
1: नहीं लग रहा
2: अभी कांटेक्ट नहीं है नेटवर्क नहीं है
1: अब हिम्मत करनी होगी कल एक नई सुबह है और अपनों के पास आप लोगों को पहुंचना है और ये कोशिश कल आप लोग करेंगे जैसे कि आप लोग बता रहे हैं
2: पहले फैमिली के पास पहुंच जाएंगे उसके बाद फिर न्यूज स्टार्टअप जीरो से उठ के आएगा तो जीरो में ही स्टार्ट किया जाएगा अभी इधर से देखा जाए कुछ मदर उदर होता है
1: आप दोनों के हौसले को सलाम उम्मीद करते हैं कि आपका परिवार जो इस वक्त उस पार फंसा हुआ है वो सलामत है और आप लोग कल उनसे जल्द से जल्द मिले यही शुभकामनाएं आप दोनों के लिए सौरभ करीना शुक्रिया
3: Well, NDTV will continue to track all that's coming out from Nepal. We are the only channel on Ground Zero. But for now, shifting our focus to another story that matters to every consumer. A Reuters investigation is putting the spotlight on what Indians are getting in packaged foods compared with consumers in other countries. The report highlights differences in the recipes of the same global brands and the battle over front-of-pack nutritional warnings in India. A can of Fanta sold in London has 63 calories. The same brand in India contains nearly three times as much sugar, according to the report. But the question is, why? Why these discrepancies when compared to what Indians are getting and what others are getting? Our next report giving you a lowdown.
4: Same brand, same global name, but a very different recipe. According to the Reuters report, a can of Fanta sold in London contains 63 calories. The Indian version contains around three times as much sugar. And while the artificial color used in the drink requires a prominent health warning in Europe, in India it appears in the ingredient list in small print at the back. The report says this is part of a larger pattern. Multinational food companies often change recipes depending on local regulations, tastes, and affordability. The Reuters report points to other differences too. Indian Kit Kats contain 4.5% cocoa solids, while the Australian version contains at least 22% cocoa, according to the report. Many Maggi noodle variants sold in Britain use sunflower oil, while Indian variants use palm oil, and some Maggi packets sold in Britain, including products made in India, carry red front-of-pack warnings for high salt. The report calls this a tale of two recipes, raising questions about whether Indian consumers are getting products with different nutritional standards. The bigger battle is over what consumers are told before they buy. India's food regulator had been considering prominent color-coded warnings on the front of packaged foods. The idea? Make it immediately clear if a product is high in sugar, salt, or fat. Industry representatives argued that warning symbols could be confusing and ineffective. Health activists disagree. They argue that consumers need simple, visible information not nutritional data buried in small print. At the heart of the debate is a simple question.

0: Food is music. Synchrony of so many elements. I am a conductor of chaos. Chef Gagar Anand at NDTV, Walk the Talk.
1: Across the country.
2: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Yeah. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. A world of questions. Ideas that challenge the ordinary. Conversations that connect countries and cultures. Where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders. The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait.
3: Welcome back. You're watching NDTV with me, Raisha Sehgal. And NDTV is the only channel on Ground Zero in Nepal, giving you a closer glimpse of the aftermath of the flash floods and the mudslides. Lots more lined up on the show, but first the headlines. Devastating flash flood in Nepal. Over 90 killed, entire villages submerged. Bridges snap and vehicles swept away. Prime Minister Modi dials Bal and Shah, assures all help from India. Jeeva takes down Kriti Sanon's Rakhi ad amid huge backlash after Kangna's attack. Brand says hurting sentiments was not the intent. Karnataka Minister Nagendra's future hangs in balance. Sources tell NDTV he is all set to quit as Mantri amid Valmiki scam heat. Nagendra downplays exit reports. All eyes on Congress leadership's decision. In swimming video spat, Union Minister Kiran Rijiju takes Rajya Sabha prize dig at Pawan Khera, drags in Rahul Gandhi, accuses Khera of making false allegations against Himanta and wife at Gandhi's behest. Zoran Mamdani opposes RSS Chief Mohan Bhagwat's event in New York, says the law prevents the city from stopping a private event at Madison Square Garden. Gets slammed by singer Mary Milpin. And a top focus on NDTV right now, Nepal is battling a devastating flood fury as torrential waters unleash destruction across several regions. Roaring rivers have swept away homes, infrastructure and livelihoods, leaving families shattered, with scores feared dead and many still missing. Rescue teams are racing against time to find those who are missing. The search continues through the night as Nepal confronts a catastrophe of staggering proportions. And as the floodwaters create chaos, a massive rescue operation is now underway on a war footing. The army and security forces have now been pressed into service, with helicopters flying sorties to evacuate those stranded. Dramatic rescue operations have been captured on camera. They're on your screens right now, while teams continue the painstaking search for those who are still missing. The scale of the devastation is becoming clearer. Nepal's Prime Minister Balan Shah has now assured the nation that the government is leaving no stone unturned in the rescue effort. He has said that saving lives remain the top priority, with security forces already rescuing more than 250 people. The Prime Minister of Nepal has also assured affected families that the state stands with them as the search for those still missing continues through the night. Well, as Nepal battles the devastating floods, India has stepped in with support for its neighboring country. India has already sent 10 tons of aid assistance along with essential medicines and earth-moving equipment to Nepal. Relief material is being mobilized as India stands ready to extend all possible assistance to Nepal in this hour of crisis and, of course, under India's neighborhood first policy. And NDTV is perhaps the only channel on Ground Zero bringing you the latest visuals and updates from the heart of the disaster. From washed away bridges to submerged towns, our reporters are tracking the devastation and the rescue effort. Take a look at this report filed by my colleague Sikta Deo.
1: The Ground Zero, we are at Nuwakot area of Nepal where the flash floods have hit and damaged and destructed this entire area. You can see a section of people who have taken some rescue on top of some buildings there. Since morning, they have been waiting for relief and rescue personnel to reach them. A few of them we spoke to said they haven't had a sip of water since morning. A massive destruction. You can see the vehicles here submerged totally in destruction which has come with the flash floods which has hit this area. Tibet border. This was the road which used to take the people, the locals, the tourists to the Tibet border. But after today's flash flood, the roads are submerged in silt. It has been continuously raining. The challenge for the army personnel is to reach the higher up mountains. Well, we are at Ground Zero and we can say on record that beyond this has been a challenge, not only for a media team like us to move ahead, but also for the rescue workers, the police personnel and the army. The helicopters are doing the sorties, but still it has been a challenge because the weather has not been conducive and it is continuously raining and it is dark now. So the rescue operations will have to resume tomorrow morning. And till then, the road to the Tibet border where the destruction has been manifold than this area will be coming out, and the ground reports from that area will be coming out tomorrow morning. We are at the Nuwakot district on the banks of Trishuri River, and this is village Vidur where the destruction is evident from these pictures. And right now here we are with some locals who are trying to locate their known ones, the people from their family, their friends. Aapka naam aur aap kisko dhoondne ke liye aaye hain Kathmandu se?
4: ये इधर का हमारा वो जो घूम गया जो लोग है इधर उस लोग का ढूंढने के लिए आए, लेकिन कुछ नहीं फिर पता चला.
1: फंसे हुए हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं?
4: फंसे उन्हें उन्हें जानकारी कुछ नहीं है.
1: Well, that's the biggest challenge right now. The moment we reached at this Ground Zero, it has been continuously raining. The challenge here is to reach the higher mountains, the higher reaches of the villages where the destruction will be much more than what we are seeing here.
5: हम इस वक्त नेपाल के नुवाकोट जिले में मौजूद हैं और हम रुके थे क्योंकि तेज बारिश हो रही थी और हम यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार कर रहे थे कि हम जब ग्राउंड जीरो में मौजूद हैं तो कुछ और रिपोर्ट्स हम आप तक पहुँचाएं. तो इस बीच हमें मिले हैं सौरव और सलीना जो यहाँ पर हमारे साथ रुके हुए थे, और हम जब इनसे बात की तो हमें पता चला कि सौरव और सलीना शख्स हैं जो आज इस इलाके में आए सैलाब के पीड़ित परिवारों में से हैं. इन्होंने अपनों को खोया है नदी के उस पार, त्रिशूली नदी के उस पार. परिवार के बाकी लोग फंसे हुए हैं, ये दोनों इस तरफ फंसे हुए हैं. इनके आंखों के सामने सैलाब में इनका घर बह गया, इनकी दुकानें बह गई. करीना कह रही थी जो कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं यही है इनके पास अब, और घर में अगर वो लौटेंगी भी कल सुबह, वो कोशिश भी करेंगी वापस परिवार के पास जाने के लिए, तो वहां पर कुछ नहीं बचा है. सौरभ, हमारी संवेदनाएं आप लोगों के साथ, और बहुत दुख की घड़ी है हर परिवार के लिए इस इलाके के. ऐसा सैलाब, ऐसा फ्लैश फ्लड इस इलाके ने पहले नेपाल में कभी नहीं देखा. आप लोग क्या कर रहे थे सुबह, और आप लोग खुश नसीब है कि आप लोग बच निकले. क्या देखा था आपने जब सुबह जब वो सैलाब आया?
6: उस समय तो मैं सो रहा था तो भाई ने फोन करके बोला कि बाढ़ आने वाला है, ऊपर से थोड़ा खबर आया है, तो तुरंत ही मैं बाहर निकला। वही टाइम पे पुलिस मैकिंग करते हुए आया कि बाढ़ आने वाला है, सब लोग सतर्क रहो। तो हम जा ही रहे थे कि फैमिली के पास जा ही रहे थे तो नया पुल अभी बना हुआ है, वहाँ पे पहुंचे तो तुरंत ही बाढ़ आ गया। वो आगे वाला जो हम लोग न्यू पुल से पुराना वाला पुल था वो बाढ़ ने मार के तुरंत उड़ा दिया। तो वही देखते हम लोग भागे, हम लोग भागते सही पुल पे कई लोग खड़ा थे, उन लोगों को बाहर ले गया।
5: आंखों के सामने आपने आपने तस्वीरें भी रिकॉर्ड की हैं?
6: रिकॉर्ड किया हूँ लेकिन वो सब नहीं रिकॉर्ड कर पाया भागने के चक्कर में। ये
5: तस्वीरें सौरभ दिखा रहे हैं जो उनके फोन में है। ऐसा सैलाब आंखों के सामने लोगों को बहाता चला गया, गाँव के गाँव मलबे और गाज में अंदर डूबते चले गए और इस तरह से तबाही इस पूरे इलाके में आज सुबह मची है। सलीना ऐसा कुछ नहीं आपने अभी तक देखा होगा इस इलाके में?
7: पहली बार
5: आपने देखा? आप क्या रिएक्शन था आपका जब आपने सुना, जैसे आपके आप सौरभ बता रहे हैं कि अनाउंसमेंट हो रहा था कि सैलाब आने वाला है, ऊपर से बाढ़ का पानी आ रहा है, लगा कि हमको सबसे पहले बच के निकलना है, भाग निकलना है, कैसे आप लोगों ने क्या बाइक में भागे, पैदल भागे, क्या किया तब आपने जब ये अनाउंसमेंट सुना?
7: डर लगा कि बाँच दिन होला जस्तो लागेको थियो, अनि मेरो पछि पछि आयो बाढी चाहिँ,
5: भाग भाग के आप लोग,
7: मेरे पीछे पीछे था बाढी,
5: बाढ़ का पानी आपके पीछे पीछे था और आप आगे आगे भाग रहे थे।
6: थोड़ी सी देर होता था हम लोग को बाहर ले जाता है, हम लोग के पीछे बड़ी मम्मी और मेरा बड़ी मम्मी का लड़का था वो बाहर ले,
5: सब भाग रहे थे।
6: हाँ सब भाग रहे थे, हम लोग के पीछे एक दो तीन लगभग चार आदमी बाहर ले,
7: हमारे पीछे जितने भी लोग थे सबको भगा
6: ले, और ज्यादातर आदमी ऊपर चढ़ गए इसलिए थोड़ा से
5: डर। वैसे में जब आपके पीछे पीछे पानी था आप लोग भाग रहे थे, अभी ऐसा लगा कि क्या होगा अगर पानी हमारे तक आ जाए, तो वो डर भी हो रहा होगा, जरूर रहा होगा। और आप लोगों खुश नसीब लोगों में है जो अपनी जान बचाने में कामयाब हुए हैं, और ऐसे कई लोग इस इलाके के लापता भी बताए जा रहे हैं। अभी तो इतनी तेज बारिश हो रही है कि अभी रेस्क्यू का भी काम रुका हुआ है, और बारिश हो रही है तो हेलीकॉप्टर भी ऊपर नहीं जा पा रहे। वहां पर कुछ जानकारी अपने परिवार से बात हो पा रही है?
6: परिवार से कॉन्टेक्ट हुआ है, उन लोग अभी सेफ है तभी, लेकिन अभी
5: फोन मिला पाए अपने माता पिता से बात कर पाए?
6: अभी तो नहीं लग रहा है, अभी
5: नहीं लग रहा,
6: अभी कांटेक्ट नहीं है, नेटवर्क नहीं
5: है। अब हिम्मत करनी होगी, कल एक नई सुबह है और अपनों के पास आप लोगों को पहुंचना है, और ये कोशिश कल आप लोग करेंगे जैसे कि आप लोग बता रहे हैं।
6: पहले फैमिली के पास पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर न्यूज़ स्टार्टअप जीरो से उठ के आएगा तो जीरो में ही स्टार्ट किया जाएगा। अभी इधर से देखा जाए कुछ मदद उदर होता है
5: हौसले को सलाम, उम्मीद करते हैं कि आपका परिवार जो इस वक्त उस पार फंसा हुआ है वो सलामत है, और आप लोग कल उनसे जल्द से जल्द मिले, यही शुभकामनाएं आप दोनों के लिए। सौरभ करीना, शुक्रिया।
3: Well, NDTV will continue to track all that's coming out from Nepal. We are the only channel on Ground Zero. But for now, shifting our focus to another story that matters to every consumer. A Reuters investigation is putting the spotlight on what Indians are getting in packaged foods compared with consumers in other countries. The report highlights differences in the recipes of the same global brands and the battle over front-of-pack nutritional warnings in India. A can of Fanta sold in London has 63 calories. The same brand in India contains nearly three times as much sugar, according to the report. But the question is, why? Why these discrepancies when compared to what Indians are getting and what others are getting? Our next report giving you a lowdown.
8: Same brand, same global name, but a very different recipe. According to the Reuters report, a can of Fanta sold in London contains 63 calories. The Indian version contains around three times as much sugar. And while the artificial color used in the drink requires a prominent health warning in Europe, in India it appears in the ingredient list in small print at the back. The report says this is part of a larger pattern. Multinational food companies often change recipes depending on local regulations, tastes, and affordability. The Reuters report points to other differences too. Indian Kit Kats contain 4.5% cocoa solids, while the Australian version contains at least 22% cocoa, according to the report. Many Maggi noodle variants sold in Britain use sunflower oil, while Indian variants use palm oil, and some Maggi packets sold in Britain, including products made in India, carry red front-of-pack warnings for high salt. The report calls this a tale of two recipes, raising questions about whether Indian consumers are getting products with different nutritional standards. The bigger battle is over what consumers are told before they buy. India's food regulator had been considering prominent color-coded warnings on the front of packaged foods. The idea? Make it immediately clear if a product is high in sugar, salt, or fat. Industry representatives argued that warning symbols could be confusing and ineffective. Health activists disagree. They argue that consumers need simple, visible information, not nutritional data buried in small print. At the heart of the debate is a simple question. Should consumers have to turn the can around, read the fine print, and decode a nutrition panel? Or should the health risks be clear before the product reaches the shopping cart? Bureau Report, NDTV.
3: Well, India's first bullet train project is gathering pace, with construction advancing rapidly across Maharashtra's Thane and Palghar districts. From massive bridges and elevated stations to tunnels cutting through the hills. Here's a look at the huge infrastructure taking shape.

0: snap and vehicles swept away. Prime Minister Modi dials Balin Shah, assures all help from India. Jeeva takes down Kriti Sanon's Rakhi ad amid huge backlash after Kangna's attack. Brand says hurting sentiments was not the intent. Karnataka Minister Nagendra's future hangs in balance. Sources tell NDTV he's set to quit as Mantri amid Valmiki scam heat. Nagendra downplays exit reports. All eyes on Congress leadership's decision. In swimming video spat, Union Minister Kiran Rijiju takes Rajya Sabha prize dig at Pawan Khera, drags in Rahul Gandhi, accuses Khera of making false allegations against Himanta and wife at Gandhi's behest. Zoran Mamdani opposes RSS chief Mohan Bhagwat's event in New York, says the law prevents the city from stopping a private event at Madison Square Garden. Gets slammed by singer Mary Melvin. And while Nepal is battling devastating floods with raging rivers sweeping away homes, infrastructure and livelihoods, scores are feared dead and many remain missing, including Indians, as rescue teams search through the night. A massive rescue operation is underway as we speak, with the army and security forces evacuating stranded people by helicopter. Teams are also searching for those who are still missing. Prime Minister Balin Shah says that saving lives is the government's top priority as we speak. Security forces have rescued more than 250 people as the search for the missing continues. India has also stepped in with support, sending 10 tons of assistance, essential medicines and earth-moving equipment to Nepal under, of course, its neighborhood first policy. New Delhi says it stands ready to provide all possible help to Nepal. And well, NDTV is the only channel on Ground Zero. My colleague Sikta Deo has sent us multiple reports from Nepal. Take a look.
1: हम इस वक्त नेपाल के नुआकोट जिले में मौजूद हैं और हम रुके थे क्योंकि तेज बारिश हो रही थी और हम यहां पर थोड़ी देर इंतजार कर रहे थे कि हम जब ग्राउंड जीरो में मौजूद हैं तो कुछ और रिपोर्ट्स हम आप तक पहुंचाएं। तो इस बीच हमें मिले हैं सौरभ और सलीना जो यहाँ पर हमारे साथ रुके हुए थे और हम जब इनसे बात की तो हमें पता चला कि सौरभ और सलीना वो शख्स हैं जो आज इस इलाके में आए सैलाब के पीड़ित परिवारों में से हैं। इन्होंने अपनों को खोया है नदी के उस पार, त्रिशूली नदी के उस पार। परिवार के बाकी लोग फंसे हुए हैं, ये दोनों इस तरफ फंसे हुए हैं। इनके आंखों के सामने सैलाब में इनका घर बह गया, इनकी दुकानें बह गई। करीना कह रही थी जो कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं यही है इनके पास अब, और घर में अगर वो लौटेंगी भी कल सुबह, वो कोशिश भी करेंगी वापस परिवार के पास जाने के लिए, तो वहां पर कुछ नहीं बचा है। सौरभ, हमारी संवेदनाएं आप लोगों के साथ और बहुत दुख की घड़ी है हर परिवार के लिए। इस इलाके के ऐसा सैलाब, ऐसा फ्लैश फ्लड इस इलाके ने पहले नेपाल में कभी नहीं देखा। आप लोग क्या कर रहे थे सुबह, और आप लोग खुश नसीब हैं कि आप लोग बच निकले। क्या देखा था आपने जब सुबह जब वो सैलाब आया?
2: उस समय तो मैं सो रहा था, तो भाई ने फोन करके बोला कि बाढ़ आने वाला है, ऊपर से थोड़ा खबर आया है, तो तुरंत ही मैं बाहर निकला। वही टाइम पे पुलिस मैकिंग करते हुए आया कि बाढ़ आने वाला है, सब लोग सतर्क रहो। तो हम जा ही रहे थे कि फैमिली के पास जा ही रहे थे, तो नया पुल अभी बना हुआ है, वहां पे पहुंची तो तुरंत ही बाढ़ आ गया। वो आगे वाला जो हम लोग न्यू पुल से पुराना वाला पुल था, वो बाढ़ ने मार के तुरंत उड़ा दिया। तो वही देखते हम लोग भागे, हम लोग भागते सहित पुल पे कई लोग खड़ा थे, उन लोगों को बाहर ले गया।
1: आंखों के सामने आपने आपने तस्वीरें भी रिकॉर्ड की हैं?
2: रिकॉर्ड किया हूँ, लेकिन वो सब नहीं रिकॉर्ड कर पाया भागने के चक्कर में। ये
1: तस्वीरें सौरभ दिखा रहे हैं जो उनके फोन में है। ऐसा सैलाब आंखों के सामने लोगों को बहाता चला गया, गाँव के गाँव मलबे और गाद में अंदर डूबते चले गए और इस तरह से ये तबाही इस पूरे इलाके में आज सुबह मची है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं आपने अभी तक देखा होगा इस इलाके में?
3: पहली बार
1: आपने देखा? आप क्या रिएक्शन था आपका जब आपने सुना, जैसे आपके आप सौरभ बता रहे हैं कि अनाउंसमेंट हो रहा था कि सैलाब आने वाला है या ऊपर से बाढ़ का पानी आ रहा है, फिर लगा कि हमको सबसे पहले बच के निकलना है, भाग निकलना है, कैसे आप लोगों ने क्या बाइक में भागे, पैदल भागे, क्या किया तब आपने जब ये अनाउंसमेंट
3: सुना? नहीं बोली मेरे पछि पछि आएगा बाढ़ी से,
1: भाग भाग के आप लोग
3: मेरे पीछे पीछे था बाढ़ी,
1: बाढ़ का पानी आपके पीछे पीछे था और आप आगे आगे भाग रहे थे।
2: थोड़ी सी देर होता था हम लोग को बाहर ले जाता है, हम लोग के पीछे बड़ी मम्मी और मेरा बड़ी मम्मी का लड़का था वो बाहर ले,
1: सब भाग रहे थे।
2: हाँ सब भाग रहे थे, हम लोग के पीछे एक दो तीन लगभग चार आदमी बाहर ले,
3: हमारे पीछे जितने भी लोग थे सबको भगा ले,
2: और ज्यादातर आदमी ऊपर चढ़ गए इसलिए थोड़ा से।
1: वैसे में जब आपके पीछे पीछे पानी था और आप लोग भाग रहे थे, अभी ऐसा लगा कि क्या होगा अगर पानी हमारे तक आ जाए, तो वो डर भी हो रहा होगा, जरूर रहा होगा। और आप लोगों खुश नसीब लोगों में हैं जो अपनी जान बचाने में कामयाब हुए हैं, और ऐसे कई लोग इस इलाके के लापता भी बताए जा रहे हैं। अभी तो इतनी तेज बारिश हो रही है कि अभी रेस्क्यू का भी काम रुका हुआ है, और बारिश हो रही है तो हेलीकॉप्टर भी ऊपर नहीं जा पा रहे। वहां पर कुछ जानकारी अपने परिवार से बात हो पा रही है?
2: परिवार से कॉन्टेक्ट हुआ है, उन लोग अभी सेफ है, तो अभी लेकिन अभी
1: भी फोन मिला पाए अपने माता पिता से बात कर पाए?
2: अभी तो नहीं लग रहा है, अभी
1: नहीं लग रहा,
2: अभी कांटेक्ट नहीं है, नेटवर्क नहीं है।
1: अब हिम्मत करनी होगी, कल एक नई सुबह है और अपनों के पास आप लोगों को पहुंचना है, और ये कोशिश कल आप लोग करेंगे जैसे कि आप लोग बता रहे हैं।
2: फैमिली के पास पहुँच जाएंगे, उसके बाद फिर न्यू स्टार्टअप, जीरो से उठ के आएगा तो जीरो में ही स्टार्ट किया जाएगा। अभी इधर से देखा जाए कुछ मदद उदर होता है था
1: हौसले को सलाम, उम्मीद करते हैं कि आपका परिवार जो इस वक्त उस पार फंसा हुआ है वो सलामत है, और आप लोग कल उन्हें जल्द से जल्द मिले, यही शुभकामनाएं आप दोनों के लिए। सौरभ करीना, शुक्रिया।
0: Well, NDTV also spoke to Nepal Medical Association President Badri, who is also a part of the ongoing rescue efforts, and here's that exclusive conversation.
4: As per our understanding, over around 105 Indian nationals are among those who have been reported missing. What specific efforts is your medical team making to identify or assist or treat any Indian nationals who have been located or rescued?
5: Yeah, this question is to the government rescue team. They can answer correctly, but from my side, we are managing the doctors who are needed in the rescue. Government asked us to, there are some doctors like orthopedics or paramedics or something, surgeon or general practice needed. Then we send our doctors to the site of the floor site, yeah. Okay. And so that I cannot say exactly how many international.
4: So as okay. of now, can you confirm the current scale of the medical response, as in how many doctors or nurses or support staff are deployed?
5: Most of the doctors, our doctors are in the site. Yeah, there is a district hospital and we are in touch with doctors.
4: Okay.
5: They are doing their service.
4: Okay.
5: And some doctors are going from the early service and some doctors are going from the route. Though road is also damaged and the road is not good, but our friends doctors are going through by route and also from the early service, and they are doing basic life-saving procedures and they are referring the patient in the tertiary center like trauma center, teaching hospital with early lead. And we are doing
4: So how are medical teams coordinating with the Nepal Army Police, Armed Police Forces and helicopter operations for search, rescue?
5: This is the mainly from the Health Ministry and the Home Ministry, yeah?
4: Yes.
5: They are they are doing the coordination, and we are also the some part of that coordination.

0: mad amid huge backlash after Kangana's attack. Brand says hurting sentiments was not the intent. Karnataka Minister Nagendra's future hangs in balance. Sources tell NDTV he's all set to quit as Mantri amid Valmiki scam heat. Nagendra downplays exit reports. All eyes on Congress leadership's decision. In swimming, video spat. Union Minister Kiran Rijiju takes Rajya Sabha prize dig at Pawan Khera, drags in Rahul Gandhi, accuses Khera of making false allegations against Himanta and wife at Gandhi's behest. Zoran Mamdani opposes RSS chief Mohan Bhagwat's event in New York, says the law prevents the city from stopping a private event at Madison Square Garden. Gets slammed by singer Mary Milpin. And a top focus on NDTV right now. Nepal is battling a devastating flood fury as torrential waters unleash destruction across several regions. Roaring rivers have swept away homes, infrastructure and livelihoods, leaving families shattered, with scores feared dead and many still missing. Rescue teams are racing against time to find those who are missing. The search continues through the night as Nepal confronts a catastrophe of staggering proportions. And as the floodwaters create chaos, a massive rescue operation is now underway on a war footing. The army and security forces have now been pressed into service, with helicopters flying sorties to evacuate those stranded. Dramatic rescue operations have been captured on camera. They're on your screens right now, while teams continue the painstaking search for those who are still missing. The scale of the devastation is becoming clearer. Nepal's Prime Minister Balan Shah has now assured the nation that the government is leaving no stone unturned in the rescue effort. He has said that saving lives remain the top priority. With security forces already rescuing more than 250 people, the Prime Minister of Nepal has also assured affected families that the state stands with them as the search for those still missing continues through the night. Well, as Nepal battles the devastating floods, India has stepped in with support for its neighbouring country. India has already sent 10 tonnes of aid assistance along with essential medicines and earth-moving equipment to Nepal. Relief material is being mobilised as India stands ready to extend all possible assistance to Nepal in this hour of crisis and, of course, under India's neighbourhood first policy. And NDTV is perhaps the only channel on Ground Zero bringing you the latest visuals and updates from the heart of the disaster. From washed away bridges to submerged towns, our reporters are tracking the devastation and the rescue effort. Take a look at this report filed by my colleague Sikta Deo.
1: The Ground Zero, we are at Nuwakot area of Nepal where the flash floods have hit and damaged and destructed this entire area. You can see a section of people who have taken some rescue on top of some buildings there. Since morning, they have been waiting for relief and rescue personnel to reach them. A few of them we spoke to said they haven't had a sip of water since morning. A massive destruction. You can see the vehicles here submerged totally in this destruction, which has come with the flash floods, which has hit this area of Tibet border. This was the road which used to take the people, the locals, the tourists to the Tibet border. But after today's flash flood, the roads are submerged in silt. It has been continuously raining. The challenge for the army personnel is to reach the higher up mountains. Well, we are at Ground Zero and we can say on record that beyond this has been a challenge, not only for a media team like us to move ahead, but also for the rescue workers, the police personnel and the army. The helicopters are doing their sorties, but still it has been a challenge because the weather has not been conducive and it is continuously raining and it is dark now. So the rescue operations will have to resume tomorrow morning, and till then the road to the Tibet border, where the destruction has been manifold than this area, will be coming out, and the ground reports from that area will be coming out tomorrow morning. We are at the Nuwakot district on the banks of Thrissuri River, and this is village Vidur, where the destruction is evident from these pictures. And right now here we are with some locals who are trying to locate their known ones, the people from their family, their friends. Aapka naam aur aap kisko dhoondne ke liye aaye hain Kathmandu se?
2: ये इधर का हमारा वो जो घूम गया जो लोग है इधर उस लोग का ढूंढने के लिए आए, लेकिन कुछ नहीं खिला पता चला।
1: फंसे हुए हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं?
2: फंसे हुए उन्हें जानकारी कुछ नहीं है।
1: Well, that's the biggest challenge right now. At the moment we reached at this ground zero, it has been continuously raining. The challenge here is to reach the higher mountains, the higher reaches of the villages, where the destruction will be much more than what we are seeing here.
3: हम इस वक्त नेपाल के नुवाकोट जिले में मौजूद हैं और हम रुके थे क्योंकि तेज बारिश हो रही थी और हम यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार कर रहे थे कि हम जब ग्राउंड जीरो में मौजूद हैं तो कुछ और रिपोर्ट्स हम आप तक पहुँचाएं। तो इस बीच हमें मिले हैं सौरभ और सलीना जो यहाँ पर हमारे साथ रुके हुए थे, और हम जब इनसे बात की तो हमें पता चला कि सौरभ और सलीना दो शख्स हैं जो आज इस इलाके में आए सैलाब के पीड़ित परिवारों में से हैं। इन्होंने अपनों को खोया है नदी के उस पार, त्रिशूली नदी के उस पार। परिवार के बाकी लोग फंसे हुए हैं, ये दोनों इस तरफ फंसे हुए हैं। इनके आंखों के सामने सैलाब में इनका घर बह गया, इनकी दुकानें बह गई। करीना कह रही थी जो कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं यही है इनके पास अब, और घर में अगर वो लौटेंगी भी कल सुबह, वो कोशिश भी करेंगी वापस परिवार के पास जाने के लिए, तो वहां पर कुछ नहीं बचा है। सौरभ, हमारी संवेदनाएं आप लोगों के साथ, और बहुत दुख की घड़ी है हर परिवार के लिए इस इलाके के। ऐसा सैलाब, ऐसा फ्लैश फ्लड इस इलाके ने पहले नेपाल में कभी नहीं देखा। आप लोग क्या कर रहे थे सुबह, और आप लोग खुश नसीब है कि आप लोग बच निकले, क्या देखा था आपने जब सुबह जब वो सैलाब आया?
4: उस समय तो मैं सो रहा था, तो भाई ने फोन करके बोला कि बाढ़ आने वाला है, ऊपर से थोड़ा खबर आया है, तो तुरंत ही मैं बाहर निकला। वही टाइम पे पुलिस मैकिंग करते हुए आया कि बाढ़ आने वाला है, सब लोग सतर्क रहो। तो हम जा ही रहे थे कि फैमिली के पास जा ही रहे थे, तो नया पुल अभी बना हुआ है, वहाँ पे पहुंची तो तुरंत ही बाढ़ आ गया। वो आगे वाला जो हम लोग न्यू पुल से पुराना वाला पुल था, वो बाढ़ ने मार के तुरंत उड़ा दिया। तो वही देखते हम लोग भागे, हम लोग भागते सहित पुल पे कई लोग खड़ा थे, उन लोगों को बाहर ले गया।
3: आंखों के सामने आपने आपने तस्वीरें भी रिकॉर्ड की हैं?
4: रिकॉर्ड किया हूँ, लेकिन वो सब नहीं रिकॉर्ड कर पाया भागने के चक्कर में। ये
3: तस्वीरें सौरभ दिखा रहे हैं जो उनके फोन में है। ऐसा सैलाब आंखों के सामने लोगों को बहाता चला गया, गाँव के गाँव मलबे और गाद में अंदर डूबते चले गए, और इस तरह से तबाही इस पूरे इलाके में आज सुबह मची है। ऐसा कुछ नहीं आपने अभी तक देखा होगा इस इलाके में?
5: पहली बार
3: आपने देखा? आप क्या रिएक्शन था आपका जब आपने सुना, जैसे आपके आप सौरभ बता रहे हैं कि अनाउंसमेंट हो रहा था कि सैलाब आने वाला है, ऊपर से बाढ़ का पानी आ रहा है, लगा कि हमको सबसे पहले बच के निकलना है, भाग निकलना है। कैसे आप लोगों ने, क्या बाइक में भागे, पैदल भागे, क्या किया तब आपने जब ये अनाउंसमेंट सुना?
5: डर लगा कि मेरे पछि पछि आएगा थी बाढ़ी से,
3: भाग भाग के आप लोग
5: मेरे पीछे पीछे था बाढ़ी,
3: बाढ़ का पानी आपके पीछे पीछे था, आप आगे आगे भाग रहे थे।
4: थोड़ी सी देर होता था हम लोगों को बाहर ले जाता है, हम लोगों के पीछे बड़ी मम्मी और मेरा बड़ी मम्मी का लड़का था, वो बाहर ले गए,
3: सब भाग रहे थे।
4: हाँ, सब भाग रहे थे, हम लोगों के पीछे दो तीन लगभग चार आदमी बाहर ले गए,
5: हमारे पीछे जितने भी लोग थे सबको भगा
4: ले। और ज्यादातर आदमी ऊपर चढ़ गए, इसलिए थोड़ा से
3: वैसे में जब आपके पीछे पीछे पानी था और आप लोग भाग रहे थे, अभी ऐसा लगा कि क्या होगा अगर पानी हमारे तक आ जाए, तो वो डर भी हो रहा होगा, जरूर रहा होगा। और आप लोगों ने खुश नसीब लोगों में है जो अपनी जान बचाने में कामयाब हुए हैं, और ऐसे कई लोग इस इलाके के लापता भी बताए जा रहे हैं। अभी तो इतनी तेज बारिश हो रही है कि अभी रेस्क्यू का भी काम रुका हुआ है।